सुप्रभात। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 24, तदनुसार 14 जून सन 2026। इस समय प्रातः के ठीक 5:58 हो रहे हैं और अब आरंभ होती है हमारी आज की ये प्रातःकालीन सभा। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रिहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद हुरमुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his visit, Mr. Modi will hold talks with the French President Emmanuel Macron, jointly launch Bharat Innovates and exchange views on key regional and global issues, and also attend the G7 summit. Upon arrival, the Prime Minister received a warm and enthusiastic welcome from the members of the Indian diaspora at Hotel Negresco. Our correspondent has the details.
3: Prime Minister Narendra Modi was accorded a vibrant community reception in Nice, where members of the Indian diaspora gathered in large numbers to welcome him. The Prime Minister also witnessed colorful performances featuring classical Indian dance forms such as Kathak, Odissi and Bharatanatyam, presented by French and Italian artists. Today at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron will jointly launch Bharat Innovates, a flagship platform showcasing India's innovation and startup ecosystem. The two leaders will also hold bilateral talks to review cooperation in key sectors including technology, defense, innovation and strategic affairs. From France, the Prime Minister will travel to Slovakia for the second leg of his visit. This is Shailesh Menon for Akashwani News, Nice, France.
2: The Prime Minister thanked the Indian diaspora in Nice for the warm welcome accorded to him. In a social media post, he described the gesture as memorable. Mr. Modi emphasized that despite being several kilometers away from home, the bond of the Indian diaspora with India remains as strong as ever. Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, ISRO chief explained that Chandrayaan 3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on the moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the moon for up to 200 days. The White House said that U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world leaders during the next week's G7 summit in France. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. On Wednesday, President Trump is scheduled to hold a bilateral meeting with Prime Minister Modi before joining a working lunch attended by G7 leaders, outreach partners, and technology executives. U.S. President Donald Trump has said a deal to end the war with Iran will be signed today and that the strategic Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. He made this announcement on a social media post, and at the same time, Trump kept the threat of fresh attacks dangling if the deal failed to pan out as expected. He said, hopefully this process will work out. If it doesn't, they have the ultimate alternative. The U.S. president also contrasted the proposed agreement with a 2015 Joint Comprehensive Plan of Action. Meanwhile, Iran's foreign ministry spokesperson Ismail Baghaei has said the signing of any agreement is unlikely to take place immediately, stating that it will not happen today and may take place in the coming days. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in a rain-affected first one-day international of the 3-match series in Dharamshala, Himachal Pradesh last night. Chasing 195 runs, India overhauled the target in 22.5 overs. Indian skipper Shubman Gill scored unbeaten 84 of 66 balls. In the ICC Women's T20 World Cup, India will begin their campaign against arch-rivals Pakistan at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. Indian Standard Time. India holds a strong record against Pakistan in women's T20 internationals, winning 13 of their 16 encounters. In Group B action, Scotland defeated Ireland by 40 runs at Old Trafford in Manchester on Friday. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम खेती की बातें में श्रोताओं, आज आप जानेंगे फसलों में खरपतवार नियंत्रण पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिमेश कुमार बख्शी।

0: कृषक मित्रों जोहार, खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आज बातें करेंगे फसलों में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। जी हाँ मित्रों, किसान की जो पैदावार है वो 20% से 40% तक कम हो जाती है खरपतवार के कारण। धान, मक्का, गेहूं, सब्जी, जो भी फसल आप बोते हैं उसके साथ खरपतवार भी उग आती है और ये खरपतवार मिट्टी का पानी, खाद और धूप सब छीन लेती है। नतीजा आपकी फसल कमजोर और पैदावार कम हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि खरपतवार नियंत्रण के कौन कौन से आसान तरीके हैं। किसान भाई बहनों, इलाज से बचाव कई गुना बेहतर होता है। तो पहला है रोकथाम, पहला वार खरपतवार पर वार, यानी साफ बीज बोए, खेत की सफाई करें और फसल चक्र को अपनाएं। खरपतवार वाले बीज खेत में मत लाएं, बोने से पहले बीज को छान लें, बुआई से पहले खेत की गहरी जुताई कर दें। ऐसा करने से खरपतवार के बीज जमीन के नीचे दब जाएंगे और उग नहीं पाएंगे। हर साल एक ही फसल मत बोए, फसल चक्र के नियमों का पालन करें, जैसे कि धान के बाद दलहन बोए, इससे खरपतवार का जो चक्र है वो टूट जाता है। दूसरा है निराई गुड़ाई, देसी तरीका सबसे बढ़िया, पुराना है पर असरदार है। फसल बोने के 20 से 25 दिन बाद जब खरपतवार छोटे हों तभी निराई कर दें। दो बार निराई गुड़ाई कर देंगे तो 70% खरपतवार जो है वो खत्म हो जाएगी। खरपतवार को खुरपी से जड़ समेत उखाड़ें, ऊपर से काटेंगे तो फिर उगाएगी। निराई के बाद पौधे की जड़ों में मिट्टी चढ़ा दें, इससे मिट्टी चढ़ाना कहते हैं, इससे पौधा मजबूत होगा। तीसरा है मल्चिंग, धूप बंद यानी खरपतवार बंद। सब्जी या बागवानी करते हैं तो ये तरीका अपनाएं। पौधे के बीच पुआल, सूखी पत्ती या काला पॉलिथीन बिछा दें, धूप खरपतवार तक नहीं पहुंचेगी तो वो उगेगी ही नहीं, साथ में मिट्टी की नमी भी बचेगी। चौथा है रासायनिक नियंत्रण, यानी सही दवा सही समय। जब खरपतवार बहुत ज्यादा हो जाए तो खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, पर तीन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पहला है सही दवा चुने, दूसरा सही समय और तीसरा सुरक्षा। धान के लिए बूटा क्लोर, गेहूं के लिए 2,4-D, मक्का के लिए एट्राजीन जो है ये दवा काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो इन्हीं का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, बुआई के 3 से 5 दिन के अंदर प्री इमर्जेंस दवा छिड़कनी चाहिए, या फिर फसल प्लस खरपतवार दोनों छोटे हों तो 15-20 दिन की अवस्था में पोस्ट इमर्जेंस दवा जो है वो आप छिड़क सकते हैं। छिड़काव करते समय दस्ताने, मास्क, पूरे कपड़े पहने और हवा के रुख के साथ छिड़कें। एक ही दवा बार बार मत डालें, खरपतवार भी इम्यून हो जाएगी, दवा को बदलते रहना चाहिए। खरपतवार को कभी भी छोटा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए और ना ही छोटा समझकर इसे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आपकी जो मेहनत है वो इसे छोटी कर देगी। समय पर नियंत्रण करेंगे तो खाद कम लगेगी, पानी कम लगेगा और पैदावार ज्यादा होगी। तो किसान भाई बहनों, आज खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत बस इतना ही। आज हम बातें कर रहे थे फसल चक्र में खरपतवार नियंत्रण को लेकर के। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, रखिए अपना पूरा पूरा ख्याल। नमस्कार, जोहार।
1: दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर, और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। प्रस्तुत है चिंतन। स्वामी विवेकानंद

आनंद कहते थे, हर आत्मा स्वभाव से दिव्य है। हमारी पूरी कोशिश उस दिव्यता को प्रकट करने की होनी चाहिए। इस विचार का अर्थ है कि हम सभी ईश्वर में विश्वास रखते हैं और हम सभी में ईश्वर जैसी शक्ति है। हम कमजोर नहीं हैं, बस हमने खुद को सीमित समझ लिया है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते, हम कुछ नहीं कर सकते। आपके भीतर वो सब कुछ है जो आपको सफल, शांत और महान बना सकता है। आपको बस उसे पहचानने की जरूरत है। हर दिन अपने भीतर झांकिए, आत्मचिंतन कीजिए और कहिए कि मैं कर सकता हूँ। यही आत्मविश्वास आत्मा की दिव्यता को प्रकट करता है। ये था आज का चिंतन। FM के 102.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र, और श्रोताओं आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपनी मातृभूमि को समर्पित इस देशगान के साथ।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। और आज इस कार्यक्रम में हमने सुना जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में भजन।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 6:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस।

जनकपुर यात्रा के अंतिम चरण में ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम तथा लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचे, जहां ऋषि ने उन्हें गंगावतरण की कथा सुनाई। जनकपुर पहुंच राजा जनक की नगरी की बनावट और उसकी शोभा देख दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए। नगरी में अनेक बावलियां, कुएं, तालाब, उसमें खिले रंग रंग के कमल, पक्षियों का कलरव, वाटिका में फूलों पर गुंजन करते भंवरे और

नगर के चारों ओर फूल पत्तों से लदे वृक्षों की मनोहारी सुषमा का वर्णन शब्दों से परे है। नगर के बाजार की अपनी अलग छवि है। सुंदर चौराहे और गलियां जैसे सदा सुगंध से सींची रहती हैं। राजा जनक के निवास स्थान की भव्यता और ऐश्वर्य देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं।

रामचरितमानस अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7 बजने को है। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार और फिर 7:10 पर होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरर धर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहर धर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजमेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 7:05 हो रहे हैं और आइए अब आपको बता दें आज यानी 14 जून के इतिहास से जुड़ी कुछ खास और रोचक जानकारियां। श्रोताओं, आज है 14 जून और आज पूरे विश्व में विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर वर्ष 14 जून को ये दिन मनाया जाता है। सन 1997 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 100% स्वैच्छिक रक्तदान नीति की नींव डाली थी। वर्ष 1997 में संगठन ने ये लक्ष्य रखा था कि विश्व के प्रमुख 124 देश अपने यहाँ स्वैच्छिक रक्तदान को ही बढ़ावा दें। और हर वर्ष इस दिन को मनाने के लिए पूरे विश्व में लोग रक्तदान करते हैं। श्रोताओं, रक्तदाताओं के जीवन और परिवर्तनकारी प्रभाव पर आज का ये दिन प्रकाश डालता है, समुदाय और एकता का सम्मान करता है और नए नियम और नियमित दोनों दाताओं को जीवन बचाने में मदद करने के लिए प्रेरित करता है आज का ये दिन। सन 1901 में आज ही के दिन पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक के आसिफ का जन्म आज ही के दिन सन 1922 में हुआ था। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हीराबाई बरोदकर, इनका जन्म भी आज के दिन ही सन 1905 में हुआ था। हिंदी और बांग्ला चलचित्र अभिनेत्री फिल्म मैं होना में शाहरुख खान की मां का रोल करने वाली अभिनेत्री किरण खेर और फिल्म वीर जारा में प्रीति जिंटा की मां के रोल में इन्हें काफी सराहा गया था। किरण खेर का जन्म आज ही के दिन सन 1955 में हुआ था। और श्रोताओं, आज ही के दिन सन 1920 में भारतीय अभिनेता भारत भूषण का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 2020 में भारतीय फिल्म अभिनेता थिएटर और टीवी कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपने अद्वितीय दृष्टिकोण, कला और समर्पण से अमर हो जाते हैं। इन्हीं महान कलाकारों में से एक हैं के आसिफ, जिनका नाम सुनते ही हिंदी सिनेमा की सबसे भव्य भूतपूर्व और ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम का चित्र मस्तिष्क में उभर आता है। एक ऐसा निर्देशक जिन्होंने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक शुद्ध और भव्य कला का माध्यम माना। उनका जीवन संघर्ष, जुनून और उत्कृष्टता की मिसाल है। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज यानी 14 जून के इतिहास से जुड़ी कुछ खास और रोचक जानकारियां। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। प्रस्तुत है सुगम संगीत।

सुगम संगीत के आज के अंक में श्रोताओं हमने सुना जगजीत सिंह की आवाज में गाए कुछ गीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और अब प्रस्तुत करते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। लोकगीतों के कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं अंगिका लोकगीत। कलाकार हैं निरंजन शर्मा।

लोकगीत एक कार्यक्रम में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे अंगिका लोकगीत। कलाकार थे निरंजन शर्मा और साथ ही इसी के साथ श्रोताओं आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

प्रस्तुत करते हैं बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि। श्रोताओं, कार्यक्रम सुरांजलि में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नजरुल गीत। कलाकार हैं अत्से मिश्रा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अच्छे मित्र की आवाज में कुछ नजरुल की थी कार्यक्रम सुरांजलि में, और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में भेंट वार्ता होगी रक्तदान जागरूकता जरूरी, इस विषय पर भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर निर्जला झा, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, आज विश्व रक्तदाता दिवस है। रक्तदान के प्रति आम लोगों को कैसे जागरूक किया जाए और रक्तदान कितना जरूरी है आज के दिनों में, आज बातें इसी विषय पर। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जमशेदपुर ब्लड बैंक की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निर्जला झा। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: डॉक्टर साहिबा, रक्तदान क्यों जरूरी हो जाता है आज के दिनों में?
2: रक्तदान महादान है, वो सब लोग जानते हैं। रक्त देने से कभी शरीर में कभी कोई किसी भी चीज की कोई चीज की कमी नहीं होती। जो रक्त आप देते हैं वो हर 3 महीने में उसका बनना और बिगड़ना ये साइकिल चलते रहता है। भले ही आप रक्त दे या न दे, ये साइकिल आपकी बॉडी में वो हर 3 महीना में जो आरबीसी सेल है हमारा वो डेड हो जाते हैं और न्यू सेल का फॉर्मेशन होते ही रहता है। इसीलिए कई लोगों का ये सोच है कि हम ब्लड देंगे तो कमजोर हो जाएंगे, हमारे शरीर से इतना इतना ब्लड निकल जा रहा है। ये नहीं, ये ब्लड आपके बॉडी से वेस्टेज ब्लड है जो आपके बॉडी से बाहर निकलता है और इसके बदले में 24 to 48 आवर में न्यू ब्लड बन जाता है। ब्लड तो बन जाता है बट कुछ चीज है जैसे कि आरबीसी सेल डब्ल्यूबीसी सेल है उसको बनने में 90 डेज लगते हैं। इसीलिए हम लोग 3 महीना में बोलते हैं कि हर 3 महीना में अपने रक्त को दान कीजिए। इससे बॉडी हमारा फिट रहता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है, हार्ट संबंधी कुछ चीज है जो नहीं होता है, और हार्ट और कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो ब्लड प्रेशर भी होने की चांसेस नहीं रहती, यानी कि आप कंप्लीट स्वस्थ रहते हैं। हो सकता है आपको शुगर होने की चांसेस भी कम हो बट गारंटी नहीं, बट कोलेस्ट्रॉल और हार्ट संबंधी प्रॉब्लम मतलब ब्लड प्रेशर ये आपका कंट्रोल रहता है। इसलिए रक्तदान करना बहुत जरूरी है। हम लोग बाहर जाते हैं कहीं कैंप में गांव वगैरह में जाते हैं या फिर शहर में आजकल बहुत ही अवेयरनेस देखते हैं सब जगह रक्तदान के प्रति, तो रक्तदान एक महादान है। हम सभी से यही बोलेंगे कि सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और रक्तदान करें।
1: आज भी ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं इसमें पीछे है, आप महिलाओं को जागरूक करने के लिए क्या कहना चाहती हैं?
2: देखिए, महिलाएं इस चीज में पीछे है क्योंकि महिलाएं में कुछ चीज है, महिलाओं का इंटरनल एब्जॉर्प्शन जो है ब्लड का हीमोग्लोबिन का वो ज्यादा है, इसीलिए महिलाएं में हीमोग्लोबिन की संख्या थोड़ा कम रहती है। बट महिलाएं भी देती है, महिलाएं ऐसा नहीं है नहीं देती है, लेकिन महिलाओं में एक चीज प्रॉब्लम है कि जो है इंटरनल एब्जॉर्प्शन ब्लड का ज्यादा है इसीलिए थोड़ा सा कम रहता है हीमोग्लोबिन। फिर भी महिलाएं भी अगर मेंटेन करके चले, अगर 8 घंटा का नींद जरूरी है, खाने पीने में आयरन मतलब आयरन रिच फूड जो है वो लेना बहुत जरूरी है, और सबसे मेन है कि टाइम टेबल को मेंटेन करके चले, महिलाएं भी में भी हीमोग्लोबिन ठीक रहेगी और वो भी ब्लड दे सकेंगे।
1: किस तरह के लोग हैं जिन्हें ब्लड नहीं देना चाहिए?
2: कुछ डिजीज है जिसमें कि ब्लड परमानेंट नहीं देने के लिए बोलते हैं हम लोग, जैसे कैंसर पेशेंट हो गया, एपिलेप्सिया पेशेंट हो गया, शिजोफ्रेनिया पेशेंट हो गया, जो है लेप्रोसी पेशेंट हो गया, ये सब पेशेंट जो है परमानेंट कभी, जैसे कि मेडिसिन चल रहा है ब्लड प्रेशर का, थायराइड का, शुगर का, इस पेशेंट कभी ब्लड नहीं दे सकते, मतलब इन पेशेंट को हम लोग कभी भी ब्लड देने के लिए नहीं बोलेंगे। हेपेटाइटिस वगैरह पे, हेपेटाइटिस सी भी, ये सब है, एचआईवी वगैरह है, उस पे ब्लड नहीं देना चाहिए और नहीं देना।
1: ब्लड लेने के पहले आप लोग किस तरह जांच करते हैं और क्या क्या देखते हैं कि कौन से लोग स्वस्थ हैं?
2: देखिए, ब्लड देने से पहले हम लोग हीमोग्लोबिन देखते हैं सबसे पहले कि ब्लड में आयरन है कि नहीं, और आयरन और प्रोटीन है कि नहीं, वो ब्लड देने में सक्षम है कि नहीं। उसके बाद ब्लड प्रेशर वगैरह भी आता है कि बहुत ही हाई ब्लड प्रेशर नहीं होना है या बहुत ही लो ब्लड प्रेशर नहीं होना है, और भी कुछ हिस्ट्री है उनका, पास्ट हिस्ट्री या फिर प्रेजेंट हिस्ट्री, जो कभी कुछ कोई डिजीज हुआ था या फिर एट अ प्रेजेंट कोई डिजीज है, कोई मेडिसिन है, ये सब चीज का हम लोग देखते हैं, उसके बाद ही हम लोग जब अगर इस चीज में फिट निकलते हैं डोनर, तो हम लोग उसी डोनर को हम लोग ब्लड देते हैं। और ब्लड देने के बाद कई सारा डिजीज है, जो ब्लड संबंधी डिजीज है, जैसे HIV, हेपेटाइटिस, BDRL, BDMP, ये सब चीज है जो बहुत ही रिस्की डिजीज है ब्लड के लिए, वो सब चीज का हम लोग जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद हम लोग इस ब्लड को सप्लाई में डालते हैं।
1: एक संदेश लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान करें,
2: रक्तदान करें, ये शरीर के लिए भी सही है, और इसी माध्यम से आप किसी का हेल्प कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा पुण्य है, इसीलिए इसको महादान बोलते हैं और गुप्त दान भी बोलते हैं। हम ये ब्लड आज दिए हैं, हमको खुद नहीं पता मेरा ब्लड ये कल किसको जाएगा, इसीलिए इस दान को हम गुप्त दान भी बोला गया है, इसीलिए रक्तदान करें, इससे बढ़ के दान कोई दान।
1: डॉक्टर साहब, आपने काफी उपयोगी जानकारियां दी रक्तदान के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत श्रोताओं भी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता रक्तदान जागरूकता जरूरी इस विषय पर। भेंट वार्ता कार थी डॉक्टर निर्जला झा और इनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा।

0: वृद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: जलवायु कार्रवाई, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु कार्रवाई की शुरुआत 1992 की पृथ्वी शिखर सम्मेलन से हुई थी और 2015 में पेरिस अग्रीमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया जिसका लक्ष्य है वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। लेकिन लगभग सभी देशों के प्रतिबद्धता के बावजूद अब तक के वादे इस लक्ष्य के लिए काफी नहीं हैं। इसलिए तुरंत और प्रभावी बदलाव जरूरी है, खासकर गरीब देशों को वित्तीय सहायता और समर्थन देना होगा। कार्बन उत्सर्जन कम करना और पर्यावरण अनुकूल व्यवहार ही सबसे जरूरी उपाय हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, यूनेस्को ने जलवायु जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 भारतीय भाषाओं में जलवायु साक्षरता की सामग्री तैयार की है।
7: FM के 102.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। सुबह के 8 बजने को है, अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 का वक्त होगा मॉर्निंग न्यूज का और 8:30 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को

0: 7 विकेट से हराया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशन को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के

0: कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देश बंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का दिया निर्देश। सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का भी समिति करेगी दौरा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कार्य। G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर बनाने पर होगी बात। मानकों के विपरीत संचालित झारखंड के 33 फार्मेसी कॉलेजों का सहमति पत्र रद्द। नए नामांकन पर रोक। विश्व रक्तदाता दिवस आज। झारखंड के सभी जिलों और प्रखंडों में चलाया जाएगा रक्तदान महाअभियान। और राज्य में अलग अलग वज्रपात की घटना में 8 लोगों की मौत। आज से अगले 7 दिनों के लिए आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों

0: का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य कर रहे हैं। धनबाद में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र सरकार का पक्ष रखा। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और वैश्विक तनाव के बीच प्रधानमंत्री के G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने को लेकर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा से शांति और संवाद के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने कहा कि G7 सम्मेलन में भी भारत शांति, सहयोग और सकारात्मक संदेश के साथ भाग लेगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से करारा जवाब भी देने का काम किया है। भारत आग दिखाना जानता है। राष्ट्रीय प्रथम की भावना से माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं और चाहे विश्व के किसी भी देशों में उनका जाना होता है तो सबसे पहली प्राथमिकता उनकी देश होती है। तो अभी भी जा रहे हैं तो जैसे पहले भी गए हैं तो देश के लिए बात करके देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेकर आए हैं, तो आने वाले समय में भी देश के लिए ही वो और जो वैश्विक परिस्थितियां बनी है वो कैसे बेहतर हो बात भी करेंगे।
0: सिंहभूम सांसद जोभा मांझी ने सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने क्षेत्र के विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय निवासियों की समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर दिया।
2: सीओ साहब की हम लोग बैठक किए, बहुत सारा समस्या को लेकर के बाजार करने वाले दुकानदारों के लिए, साग सब्जी वाले के लिए, पानी के लिए बहुत सारे समस्या था, उन विषय को लेकर के चर्चा हुई, समाधान की ओर हम लोग पहुंचे और निगम के तरफ से इन लोग को हटाया जाता है, कभी कभी फिर बैठाया जाता है, तो उसका अस्थायी समाधान करने के लिए हम इसका रास्ता हम लोग ढूंढ निकाल रहे हैं कि आने वाला समय में इस तरह का कठिनाई नहीं।
0: सांसद नलिन सोरेन की अध्यक्षता में जामताड़ा समाहरणालय सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक हुई। इसमें नाला विधानसभा के विधायक सह विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, सारठ विधायक उदय शंकर सिंह सहित जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा संचालित विकास, जन कल्याणकारी योजनाएं एवं आधारभूत संरचना की स्थिति एवं प्रगति की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने एवं समय पर योजनाओं का पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। झारखंड में नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे 33 फार्मेसी कॉलेजों का सहमति पत्र रद्द कर दिया गया है। इन कॉलेजों में अब आगामी सत्र 2026-27 में नए एडमिशन नहीं हो सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग की जांच में इन संस्थानों में आधारभूत संरचना, प्रयोगशाला, आवश्यक उपकरण, योग्य शिक्षकों और शैक्षणिक मानकों से जुड़ी गंभीर कमियां मिलने के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा समिति के सदस्य सचिव द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि संबंधित संस्थानों ने निर्धारित नियमों के अनुरूप आवश्यक मानकों का पालन नहीं किया है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्तदान को बढ़ावा देने और स्वैच्छिक रक्तदाताओं को सम्मान देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाएगा, जिसके तहत झारखंड के सभी जिलों और प्रखंडों में रक्तदान महाअभियान चलाया जाएगा। इस महाअभियान में निःशुल्क ब्लड ग्रुप और हेमोग्लोबिन जांच के साथ रक्तदान शिविर, जागरूकता कार्यक्रम, शपथ समारोह और स्वास्थ्य जाँच शिविर का भी आयोजन होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित कर इच्छुक रक्तदाताओं का ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और ब्लड कलेक्शन कराया जाए। इस बार विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाए रखी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटी

0: ए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का भी सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग की पहल पर जामताड़ा जिला प्रशासन के द्वारा समारोह का आयोजन कर झारखंड राज्य निर्माण में जामताड़ा जिले के आंदोलनकारियों को विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सम्मानित किया। मौके पर स्पीकर ने कहा कि यह केवल प्रमाण पत्र नहीं बल्कि झारखंड अलग राज्य निर्माण में आंदोलनकारियों द्वारा किए गए संघर्ष, त्याग, योगदान एवं समर्पण का सम्मान है।
1: उनके बताए हुए मार्ग पर आज भी हम लोग चल रहे हैं और जो काम हम लोगों का बाकी है कि झारखंड में को एक संतुलित विकास करके देश के अग्रिम पायदान तक पहुंचाए पर आज भी हम लोग काट कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर में सबसे लंबा आंदोलन चलने वाला आंदोलन अगर कोई था ये झारखंड अलग प्रांत का आंदोलन था।
0: केंद्र सरकार के खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को जागरूक करने के लिए साहिबगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों में इससे संबंधित गतिविधियां आयोजित हो रही है। केवीके साहिबगंज की प्रमुख डॉक्टर सुप्रिया सिंह ने बताया कि प्राकृतिक खेती कम लागत और सुरक्षित उपज के लिए कारगर उपाय है। वहीं महिला किसानों ने बताया कि इसको सीख कर अपने गाँव के अन्य किसानों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी।
2: हम यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा प्राकृतिक खेती से खेती करने के लिए और गांव जाके हम सभी दीदी को बताएंगे कि प्राकृतिक खेती कैसे करना है और कैसे किया जाता है। के लिए पहले तो हम खुद बदलेंगे प्राकृतिक खेती करने के लिए, के बाद दीदी लोग को जागरूक करेंगे। प्राकृतिक खेती करने से आपका खेत का मिट्टी का उपजा बहुत अच्छा होगा, अच्छा है और बीमारी जो होता है वो भी कम होगा।
0: राज्य में अलग अलग वज्रपात की घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई है। इधर मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक सभी जिलों में तेज हवा और मेघ गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने असम में विमान हादसा में 5 जवानों के शहीद होने की खबर को सुर्खी बनाई है। इसके अलावा दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। हिंदुस्तान ने लिखा है, फैसला अर्धसैनिक बलों के जवान केंद्रों तक पहुंचाएंगे नीट का पेपर। प्रभात खबर के शब्द है, महिला T20 विश्व कप भारत पाकिस्तान महामुकाबला आज। दैनिक भास्कर ने फीफा वर्ल्ड कप की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। लिखा है, खूखी के हेडर से अंतिम 2 मिनट में कतर ने की वापसी, मैच 1-1 से ड्रॉ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का दिया निर्देश। सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का भी समिति करेगी दौरा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कार्य। G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर बनाने पर होगी बात। मानकों के विपरीत संचालित झारखंड के 33 फार्मेसी कॉलेजों का सहमति पत्र रद्द, नए नामांकन पर रोक। विश्व रक्तदाता दिवस आज, झारखंड के सभी जिलों और प्रखंडों में चलाया जाएगा रक्तदान महाअभियान। और राज्य में अलग अलग वज्रपात की घटना में 8 लोगों की मौत, आज से अगले 7 दिनों के लिए आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉव पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा, साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव

हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026।
3: जनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जनूबी इलाकों तक पहुँचने के लिए हालात साजगार हैं। अमरीकी सदर

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ।

श्रोताओं, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपने अद्वितीय दृष्टिकोण, कला और समर्पण से अमर हो जाते हैं। इन्हीं महान कलाकारों में से एक हैं के आसिफ, जिनका नाम सुनते ही हिंदी सिनेमा के सबसे भव्य, भूतपूर्व और ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम का चित्र मस्तिष्क में उभर आता है। एक ऐसा निर्देशक श्रोताओं जिन्होंने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक शुद्ध और भव्य कला का माध्यम माना था। उनका जीवन संघर्ष, जुनून और उत्कृष्टता का मिसाल है। श्रोताओं, के आसिफ का जन्म 14 जून यानी आज के दिन ही सन 1922 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। इनका असली नाम अख्तर हुसैन रिजवी था। एक साधारण से परिवार से ही आते थे, लेकिन इनमें एक असाधारण दृष्टिकोण और कला के प्रति जुनून जन्मजात था। इनकी फिल्मी दुनिया की ओर आकर्षण बचपन से ही था और इसी जुनून ने इन्हें बंबई की ओर खींच लिया। के आसिफ ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब ये क्षेत्र केवल कुछ विशेष लोगों का ही था। एक बाहरी व्यक्ति के लिए उस जमाने में खुद को साबित करना बहुत कठिन था। उन्होंने प्रारंभ में बतौर दर्जी का काम किया और वहीं से उनकी मुलाकात हुई अभिनेता प्रेमनाथ और फिल्मकार नजीर हुसैन से। इन्हीं संबंधों ने उन्हें सिनेमा के करीब ले आए। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1945 में फूल से की, जो कि एक सफल फिल्म रही और उनके निर्देशन की प्रतिभा को दर्शकों ने काफी सराहा। बातें अभी और भी करेंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं ये बेहद खूबसूरत सा गाना।

लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मुगले आजम का ये गीत श्रोताओं भी आपने सुना। वो लिखे हैं शकील बदायूनी ने और धुन बनाई है नौशाद ने। श्रोताओं, जब भी के आसिफ का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले फिल्म मुगले आजम का ही जिक्र होता है। ये फिल्म केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये भारतीय सिनेमा की भव्यता, तकनीकी उत्कृष्टता और दृढ़ संकल्प का एक प्रतीक बन गई। के आसिफ ने मुगले आजम का सपना सन 1944 में देखा और 1960 में ये सपना साकार हुआ। इस फिल्म के निर्माण में लगभग 16 साल लगे। अनेक बार इस निर्माण में रुकावटें आएं, आर्थिक संकट, कलाकारों का बदलना, तकनीकी सीमाएं, लेकिन इन सब के बावजूद आसिफ का जुनून टस से मस नहीं हुआ। इस फिल्म में उन्होंने अकबर, सलीम और अनालकरी की प्रेम कथा को एक नई भव्यता दी। फिल्म की सेट डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम, संवाद, गीत संगीत और अभिनय, हर पक्ष को उन्होंने बड़ी ही सजीव, वास्तविक और भव्य रूप से संवारा। उन्होंने उस जमाने में असंभव माने जाने वाले कैमरा एंगल्स, रोशनी और साउंड तकनीक का उपयोग किया। 1960 में रिलीज हुई मुगले आजम ने जबरदस्त सफलता हासिल की। ये भारत की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बनी। फिल्म के संवाद जैसे सलीम सलाम आखिरी कबूल फरमाइए, ये सब आज भी याद किए जाते हैं। श्रोताओं, के आसिफ अपनी हर फिल्म में परफेक्शन चाहते थे। वे किसी भी दृश्य की शूटिंग तब तक नहीं करते जब तक उन्हें उनके मानदंडों पर खरा न उतर पाते हों। और इस तरह से उन्होंने न केवल फिल्म को एक अलग दिशा दी बल्कि फिल्म को, सिनेमा को आज जन जन तक पहुंचाया। आज इनकी जयंती पर हम इन्हें नमन करते हैं। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने को है समाचार। आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख

0: वी नारायणन ने बेंगलुरु में बताया कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा था। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी मौजूद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मॉनसून के स्वागत का त्योहार बताया। उन्होंने कहा कि त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूलों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी में फीफा विश्व कप 2026 में ब्राजील ने ग्रुप सी के मैच में मोरक्को के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। इससे पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया में कतर और स्विट्जरलैंड के बीच भी ग्रुप बी का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। इस बीच हैती और स्कॉटलैंड का मैच जारी है। आज के अन्य मैचों में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप डी में तुर्की से 9:30 बजे और जर्मनी 10:30 बजे ग्रुप ई में कुराकाओ का सामना करेगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ।

പ്രസുധെ സുരഞ്ജന. एक ऐसा चमकता सितारा जो असमय ढल गया. जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के एक ऐसे ही चमकते सितारे की जो अब सच में तारा बन गया. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरंजना में. जनवरी 1986, इस तारीख को कृष्ण कुमार सिंह और उषा सिंह के घर पर एक बेटे का जन्म हुआ. नाम रखा गया गुलशन, जिन्हें बाद में दुनिया ने सुशांत सिंह राजपूत के नाम से जाना. सुशांत चार बहनों में इकलौते भाई थे और इसी कारण वे सभी बहनों के लाडले थे. जब ये 16 वर्ष की आयु में थे तभी ब्रेन हैमरेज से इनकी माँ का निधन हो गया. इनकी प्रारंभिक शिक्षा श्रोताओं सेंट कैरेंस हाई स्कूल पटना से हुई और बाद में इन्होंने दिल्ली के कुलांची हंसराज मॉडल स्कूल से पढ़ाई की. पढ़ाई में ये काफ़ी होशियार थे. सुशांत ने AIEEE में 7वां स्थान प्राप्त किया था और वे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र रहे. हालांकि वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में ही थे लेकिन उन्होंने अभिनय और नृत्य की ओर अपने जुनून को पहचानते हुए पढ़ाई छोड़ दी और सपनों की नगरी मुंबई का रुख किया. इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ डांस क्लास से जुड़े, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया और सुशांत बचपन से ही इंट्रोवर्ट थे. वे ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, उनके बस 2-3 दोस्त थे. जब उनका जुड़ाव डांस से हुआ तब वो इसी के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगी. इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ सुशांत ने श्यामक डावर डांस क्लास भी ज्वाइन कर लिया. हालांकि इस क्लास की फीस के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और इसीलिए उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर डांस क्लास की फीस भरी. डांस में सुशांत इतने माहिर थे कि कुछ समय में ही वे डावर डांस ट्रूप के मेंबर बन गए और फिर उन्हें 2005 में 91वीं फिल्मफेयर अवार्ड सेरेमनी में बतौर बैक डांसर परफॉर्म करने का मौका मिला. इसी ट्रूप के साथ 2006 में सुशांत ऑस्ट्रेलिया गए जहां उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय के पीछे डांस करते देखा गया था. इसके बाद तो सुशांत इस ट्रूप के साथ कई बड़े इवेंट्स में डांस करते नजर आए, हालांकि तब उनकी पहचान सिर्फ बैक डांसर के तौर पर थी. मुंबई आने के बाद सुशांत ने मशहूर कोरियोग्राफर श्यामक डावर के डांस ग्रुप से प्रशिक्षण लिया और कई मंच प्रस्तुतियों का हिस्सा बने और यहीं से उन्हें बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए काम करने का मौका मिला. सुशांत को टीवी पर पहली बार सीरियल किस देश में है मेरा दिल में देखा गया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली स्टार प्लस के सीरियल पवित्र रिश्ता से, जिसमें उन्होंने मानव देशमुख का किरदार निभाया. ये शो जबरदस्त लोकप्रिय हुआ और सुशांत घर घर में पहचाने जाने लगे. उन्होंने झलक दिखला जा जैसे डांस रियलिटी शो में भी भाग लिया और वहां भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. टीवी पर अपार सफलता के बाद सुशांत ने फिल्मों में कदम रखा और जल्द ही अपनी अभिनय क्षमता से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. अभिषेक कपूर की इस फिल्म यानी काईपो 6 में सुशांत ने क्रिकेट कोच ईशान भट्ट का किरदार निभाया. ये फिल्म उनके फिल्मी करियर का टर्निंग पॉइंट बनी और समीक्षकों व दर्शकों दोनों ने उनके अभिनय की खूब सराहना की. कार्यक्रम सुरंजना की शुरुआत श्रोताओं आइए करते हैं फिल्म काईपो 6 के इस गाने के साथ.

फिल्म काइपोची का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना अमित त्रिवेदी की आवाज में। स्वनंद किरकिरे के बोल हैं और धुन बनाई है अमित त्रिवेदी ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरंजना।

और मैं ही श्रोताओं आपको सुनवाते हैं फिल्म पीके का ये गाना, जिसे गाया है शान और श्रेया घोषाल ने, बोल लिखे हैं स्वनंद किरकिरे ने ही और धुन बनाई है शांतनु मोहित्रा ने। हालांकि ये फिल्म जो थी वो आमिर खान की थी, लेकिन सुशांत ने एक छोटी सी लेकिन बेहद प्रभावशाली भूमिका इस फिल्म में निभाई।

FM 102.4 MHz पर श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरंजना। सुशांत के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जो आई थी सन 2016 में। महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित इस फिल्म में सुशांत ने क्रिकेट कप्तान का किरदार इतनी बारीकी से निभाया कि दर्शक उन्हें असली धोनी मान बैठे। उन्होंने महीनों तक ट्रेनिंग ली, क्रिकेट सीखा और धोनी की चाल ढाल अपनाई। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म MS धोनी का ये गाना जिसे गाया है सिद्धार्थ बरुआ ने, मनोज मंतुशिर के बोल हैं और धुन बनाई है अमाल मलिक ने।

श्रोताओं, 2019 में आई फिल्म छिछोरे, ये फिल्म जीवन में असफलता, दोस्ती और आत्महत्या जैसे गंभीर विषयों पर आधारित थी। फिल्म में सुशांत का किरदार एक प्रेरणास्पद पिता का था और यही फिल्म कुछ ही महीनों बाद उनके असली जीवन से बहुत कड़वा मेल खाती नजर आई। श्रोताओं, सुशांत केवल एक अभिनेता नहीं, एक बुद्धिजीवी, विज्ञान प्रेमी, खगोल शास्त्र के छात्र, तकनीक प्रेमी और समाज से जुड़ी समस्याओं पर चिंतन करने वाले व्यक्ति थे। उनके पास एक टेलीस्कोप था और वे नासा जाने की योजना बना रहे थे। कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनकी बहुत रुचि थी। वे 100 सपनों की सूची लेकर चलते थे, जिनमें से कुछ थे पायलट बनना, क्वांटम फिजिक्स पढ़ना, बच्चों को विज्ञान सिखाना और भी बहुत कुछ। उन्होंने कई छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाया, ज़रूरतमंदों की मदद की और वैज्ञानिक शोध में योगदान भी दिया। वे अक्सर अपने सोशल मीडिया पर प्रेरणादायक बातें और विज्ञान से जुड़े विचार साझा करते थे। आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं फिल्म छिछोरे का ये गाना, जिसे गाया है नकाश अजीज, अमित मिश्रा, देव नेगी, अंतरा मित्रा और श्री रामचंद्र ने। बोल लिखे अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है प्रीतम ने।

श्रोताओं, आज सुशांत हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी यादें, इनके विचार, इनके फिल्में और इनका जुनून हमेशा हमारे साथ हैं। इन्होंने दिखाया कि टीवी कलाकार भी बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बना सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि अभिनेता सिर्फ ग्लैमर से नहीं, ज्ञान और संवेदना से भी महान बनता है। उन्होंने एक पीढ़ी को प्रेरित किया कि सपने देखो, उन्हें सूची में लिखो और उन्हें पूरा करो। इनकी पुण्यतिथि हर साल न सिर्फ हमें याद करने का दिन है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और सपनों को जीवने की प्रेरणा का स्मरण दिवस बन चुकी है। श्रोताओं, सुशांत सिंह राजपूत का जीवन एक अधूरी कविता की तरह है, सुंदर, प्रेरणादायक, लेकिन अंत अचानक और पीड़ादायक। उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें अपनी आत्मा डाल दी। उनके सपने, संघर्ष और विचारों को याद रखना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। हमें न केवल सुशांत को याद करना है, बल्कि उनकी सोच, उनकी वैज्ञानिक दृष्टि और उनके स्वाभिमान और सकारात्मकता को अपनाने का प्रयास भी करना है। वे अभिनेता नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे।

0: और श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम सुरंजना अब संपन्न होता है।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
0: यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत करते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव।

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: सभी श्रोता बच्चों के साथ साथ कार्यक्रम में शामिल बच्चों का भी कार्यक्रम में स्वागत। इसी समय इसी फ्रिक्वेंसी पर हर रविवार आप सुनते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम पल्लव। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हमेशा की तरह आपकी सीमा दीदी।

0: बच्चों सबसे पहले आपको आज के कार्यक्रम में शामिल बच्चों के नाम बताए देते हैं। ये बच्चे हैं मयंक कुमार और सार्थक श्रीवास्तव। ये अपना परिचय तो देंगे ही, साथ ही दोस्तों से कई जानकारी की बातें भी शेयर करेंगे। आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास है। रक्तदान महादान है, ये हम सभी जानते हैं। रक्तदान कर हम किसी की जान बचा सकते हैं। आप बच्चे तो रक्तदान नहीं कर सकते, है ना बच्चों?
1: जी जी जी जी।
0: लेकिन आपको रक्तदान के विषय में जानना जरूरी है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है, तो इस विषय पर आज के कार्यक्रम में चर्चा होगी। बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज की नींव होते हैं। उनका अनुभव और आशीर्वाद हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। उनकी सेवा करना हमारा नैतिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि एक वरदान भी है। कल बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है। अधिकतर घरों में बुजुर्ग आज प्रताड़ित हो रहे हैं या फिर अकेले जीवन जीने को मजबूर हैं। इसी संदर्भ में हमने कुछ बुजुर्गों से बातचीत की। बातचीत के कुछ अंश भी हम आपको आज के कार्यक्रम में सुनवाएंगे। साथ ही श्रृंखला मेरी बारी के अंतर्गत बच्चों के मुख से भी आप सुनेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले कार्यक्रम में शामिल बच्चों का परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले सार्थक, आप अपने बारे में अपने दोस्तों को बताएं।
2: मैं सार्थक, कक्षा 8वीं ई डीएवी पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ।
0: बहुत अच्छे सार्थक। और हमारे बीच मयंक भी है। मयंक, आप अपने दोस्तों को अपने बारे में बताएं।
3: मेरा नाम मयंक कुमार है, मैं कक्षा 6 से मैं पढ़ता हूँ, मैं राजेंद्र विद्यालय का छात्र हूँ।
0: बहुत अच्छे मयंक। तो कार्यक्रम में शामिल बच्चों का परिचय हमने जाना। ये बच्चे गीत और कविताएं सुनाएंगे, साथ ही जरूरी बातें भी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसलिए बच्चों कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए।

0: बच्चों आज विश्व रक्तदाता दिवस है। सार्थक, आप अपने दोस्तों को रक्तदान महादान के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: जी दीदी, रक्तदान महादान होता है, यह मानवता की अमूल्य सेवा है। रक्तदान के प्रति लोगों में कुछ भ्रम है, इसे दूर कर लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक करना चाहिए। 18 वर्ष से अधिक की उम्र वाले व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान से न सिर्फ किसी की जान बचाई जा सकती है, बल्कि इससे रक्तदान करने वाले व्यक्ति को भी कई लाभ होते हैं। रक्तदान के पहले कई प्रकार के जांच की जाती है। रक्तदान का महत्व तब समझ में आता है जब किसी बीमारी या किसी दुर्घटना के बाद हमें रक्त की जरूरत होती है। अतः सभी स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए।
0: बहुत अच्छी बातें कही सार्थक ने कि रक्तदान का महत्व हमें तब समझ में आता है जब किसी बीमारी या किसी दुर्घटना के बाद हमें रक्त की जरूरत होती है ना। रक्तदान महादान है, इस बारे में सार्थक ने हमें बताया। जैसा कि बच्चों अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन कुछ दिनों में स्कूल भी खुल जाएंगे। इन छुट्टियों के दिनों में मयंक आप बाहर गए थे?
2: जी दीदी, हम बाहर गए थे।
0: कहाँ गए थे?
2: हम कटक गए थे अपने मामा जी से मिलने, और हम नंदन कानन जू भी घूमने गए।
0: अच्छा, वहाँ आपने क्या क्या देखा?
2: मैंने बहुत सारे जानवरों को देखा, जहाँ पे शेर, बाघ, हिप्पोपोटामस, राइनोसोरस, जिराफ और ऐसे बहुत सारे जानवरों को देखा हूँ।
0: तो आपको डर नहीं लगा?
2: देखो, कभी डर नहीं लगा, मैं निडर हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, आप निडर हैं। इन छुट्टियों में काफी मजे किए हैं ना। आपके साथ कौन कौन था?
2: हमारे साथ नाना जी थे, मम्मा जी थे, नानी जी थे, मेरे मामा जी थे और हम थे।
0: और कहीं भी गए कि केवल नंदन कानन गए?
2: हम साथ में कलकत्ता के वेल्लोर मठ गए।
0: अच्छा,
2: हम अपने नाना जी के साथ वहाँ दर्शन करने गए।
0: बहुत से जगहों में घूमा आपने। गर्मी की छुट्टियों का आपने कैसे सदुपयोग किया जब आप घर आ गए? तो कुछ बताना चाहेंगे अपने दोस्तों को?
2: मैंने अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट, फुटबॉल खेला। मैंने ज्यादातर पौधे भी लगाए, जैसे कि कैप्सिकम प्लांट, चिली प्लांट एंड एडेनियम प्लांट लगाए।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और क्या किया?
2: और इतनी गर्मी है तो मैंने बालकनी में बर्ड्स के लिए दाना और पानी रखा हूँ। बर्ड्स खाती है और पानी पीकर चले जाती है अपने घर।
0: तो आपको अच्छा लगता है ये देखना?
2: ये हमको बहुत अच्छा लगता है देखना।
0: और क्या किया आपने?
2: ड्रॉइंग भी सीखा और पेंटिंग भी किया, और साथ में अपना पढ़ाई भी कर रहा हूँ। और मैंने मंत्र भी सीखा, कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले तुर्भुर्माते संगोत्सु कर्मणि।
0: तो बहुत अच्छे मयंक, तरह तरह की चीजें आपने सीखी, मंत्र भी सीख लिया है ना। बहुत अच्छी बात है, मयंक ने अपनी छुट्टियों का पूरी तरह सदुपयोग किया है। और सार्थक भी हमारे बीच हैं। आपने गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताई?
1: मैं अपने हॉलीडे वर्क को पूरा किया और स्विमिंग सीखा और खूब खेला।
0: कहाँ स्विमिंग सीखने गए थे आप?
1: मैं जमशेदपुर जी टाउन क्लब।
0: अच्छा, आप पहले से सीख रहे हैं या फिर आपने गर्मी की छुट्टियों में ज्वाइन किया?
1: मैं गर्मी की छुट्टियों में ज्वाइन किया।
0: तो कैसा लगा?
1: बहुत मजा आया।
0: तो पूरी तरह आप ट्रेंड हो गए हैं, स्विमर बन चुके हैं?
1: जी दीदी।
0: कितने दिन लगे?
1: 28 डेज।
0: तो बहुत अच्छी बात है सार्थक, आप इसे कंटिन्यू रखना चाहेंगे?
1: जी दीदी।
0: छुट्टियों का समय हमारे लिए बहुत कीमती होता है बच्चों, और इसका अगर हम सही सदुपयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। कितने तरह के कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो पढ़ाई, खेल या म्यूजिक से संबंधित हो, आपकी उसमें केवल रुचि होनी चाहिए, है ना बच्चों?
3: जी दीदी।

0: बच्चों, क्या आप जानते हैं बड़ों की दुआएं जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसान कर देती है और सफलता की राह खोलती है। उनके साथ समय बिताने और उनकी देखभाल करने से आप में अच्छे संस्कार और मानवीय मूल्य विकसित होते हैं। मनुस्मृति में वर्णन है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अर्थात तुम अपने बड़ों का आशीर्वाद लो, निश्चित रूप से बड़ों के आशीर्वाद से तुम्हारी आयु बढ़ेगी। सच ये भी है कि उन बुजुर्गों में इससे आरोग्यता, प्रसन्नता, उल्लास बढ़ता है। सार्थक, बुजुर्गों को किस प्रकार हमें सम्मान देना चाहिए, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने दोस्तों से?
1: जी दीदी, हम बच्चों के लिए बुजुर्गों को सम्मान देना जरूरी है। यह हमें जरूर सीखना चाहिए कि हम बुजुर्गों को कैसे सम्मान दें। यह हमें नैतिक मूल्य और पारिवारिक संस्कार सिखाता है। बड़े हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। उनके प्रति आदर भाव से बच्चों में आत्मविश्वास और अच्छे बुरे में अंतर की समझ बढ़ती है। बुजुर्गों के अनुभव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बड़ों को सम्मान देने से हम बच्चों में विनम्रता, दयालुता और धैर्य जैसे गुण आते हैं। बड़ों के साथ समय बिताने और उनकी राय को महत्व देने से आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ता है। धन्यवाद।
0: हमें बुजुर्गों को सम्मान जरूर देना चाहिए और उनकी देखभाल के साथ साथ उनके साथ समय बिताना चाहिए। मयंक, आपके घर में कौन है, दादा दादी हैं?
2: मेरे घर में दादा दादी हैं।
0: अच्छा, दादा दादी के साथ आप समय बिताते हैं?
2: जी हाँ, समय बिताते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं।
0: ख्याल रखते हैं?
2: ख्याल रखते हैं। मैं कुछ लाइनें कहना चाहता हूँ सभी दादा दादी के लिए। दादा दादी परिवार के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य होते हैं। वे पूरे परिवार का मार्गदर्शन करते हैं। वे हमें हमेशा अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और बड़ों का आदर करना सिखाते हैं। दादाजी हमें हमेशा बाहर घुमाने ले जाते हैं और हमारे होमवर्क में मदद करते हैं। दादी हमें रात को सोने से पहले जीवन की सीख देने वाली बहुत ही सुंदर कहानियाँ सुनाती है। वे हम बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं और हमारी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखते हैं। माता पिता के व्यस्त होने पर दादा दादी ही हमारे सबसे अच्छे दोस्त बनते। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है। घर में दादा दादी का होना ईश्वर के आशीर्वाद के समान है, इसीलिए हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।
0: मयंक अभी अपने दोस्तों को बता रहे थे कि किस प्रकार वो अपने दादा दादी का ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने घर के बड़ों का ख्याल रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर बुजुर्गों को मान सम्मान और भरपूर प्यार दें। आइए इसी विषय पर कुछ बुजुर्गों के विचार जानते हैं।
3: आपका नाम क्या है?
4: छाया हुई। आप कितने साल के हैं?
3: 78।
4: आप घर पर रहती हैं, कैसे समय बिताती हैं आप?
3: हम घर पर ही रहते हैं, अच्छे ही, हमारा सब कुछ ठीक ही है।
4: अच्छा, घर के लोग आपका पूरा ध्यान देते हैं?
3: पूरा ध्यान देते हैं।
4: अच्छा, कितने बच्चे हैं?
3: मेरा बच्चा 2 है, बेटा और बेटी, क्या पुत्र है।
4: अच्छा, बाहर पढ़ रहा है?
3: बाहर पढ़ रहा है।
4: अच्छा, आजकल के जो बच्चे हैं माता पिता पर समय नहीं देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, तो आप क्या कहेंगे उन बच्चों से?
3: माँ बाबा का ध्यान रखना चाहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, समय बिताना, यही हम चाहते हैं।
4: ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू।
4: आपका नाम क्या है?
5: जोगिंदर कौर संगू।
4: आपकी उम्र क्या है?
5: मेरी उम्र अभी 78 होने वाली है।
4: अच्छा, कैसे समय बिताती हैं आप?
5: घर में मैं सुबह उठ के योगा करती हूँ, अपनी प्रार्थना पूजा वगैरह करती हूँ, उसके बाद मैं वॉक जाती हूँ। फिर हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारी कॉलोनी में हमारी एज ग्रुप जितनी है, हम लोग वहाँ कभी मिलते हैं, गपशप मारते हैं, बस कुछ अच्छी बातें करते हैं, इसी तरह टाइम पास होता है।
4: घर में कौन कौन है, अकेले रहती है या बच्चे भी साथ में है?
5: नहीं, मेरे बच्चे साथ में नहीं है, मेरे बच्चे बाहर है जॉब कर रहे, मैं उनके पास कभी कभी चली जाती हूँ। अभी मैं उन्हीं के पास से आई हूँ और यहाँ जमशेदपुर में घर में हूँ, और मैं यहाँ रहूंगी तो मेरे बच्चे आएंगे, अभी वो लोग आएंगे।
4: देखने में आता है अभी कि बेटा बहुएं और यहाँ तक कि बेटियाँ भी जायदाद संपत्ति तक ही माता पिता की देखभाल करते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में। ऐसे बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगी?
5: बच्चों, नजदीक का रिलेशन आपका कोई भी आपकी इतनी देखभाल नहीं कर सकता जो माँ और बाप करते हैं। इसलिए बच्चों को अपने माँ बाप, दादा दादी, उनका सबका स्पेशल ध्यान देना चाहिए। कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि उनके

0: दिए उस दादा दादी को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी अपनी लाइफ में बच्चे भी बिजी हो जाते हैं,
1: उन्हें समय देना बहुत जरूरी है।
0: हाँ, उनको समय देना बहुत जरूरी है। और एक काम कर सकते हैं, उनके आपके पास बहुत समय नहीं है, लेकिन सुबह होकर उनको विश जरूर करो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार करो, और घर से बाहर निकलते समय उनको बोलो दादा दादी को नमस्कार करके, दादी मैं जा रहा हूँ। फिर जब आ गए तो जस्ट आके एक छोटी सी हेलो जरूर करो, मैं आ गया हूँ। वो तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे, इसलिए खुश हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, उनका आशीर्वाद जरूर लेते रहना चाहिए।
0: हाँ, उनका आशीर्वाद हम जरूर लेते रहना चाहिए, उनको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। यदि आप उनसे बात नहीं करोगे तो उनको लगेगा ये बच्चे हमको बहुत निग्लेक्ट करते हैं। भगवान ना करे तुम्हारा भी समय आएगा और तुम घर में बैठे हो और तुम्हारे बच्चे तुमको बिना बताए तुम्हारे पास से चले जाते हैं, तो तुमको कैसा फील होगा। सो वो चीज अगली जनरेशन में ना आए, तुमको अभी दिखाना है। तो इसलिए बच्चों को मैं ही बोलना चाहूंगी कि अपने माँ बाप, उसके बाद उसके दादा दादी, वो ओल्ड हो चुके हैं, उनका भी घर में कोई रोल नहीं है, काम नहीं है, तुमको ऐसा फील नहीं कराना कि अभी आपकी जरूरत नहीं है। जरूर उनका रिस्पेक्ट करो, उनके यदि आपके घर में कल्चर है पांव छूके जाने का तो पांव छूके जाइए या बोल के जाइए, उनको स्पेशल ध्यान दो। कभी कभी आपको समय नहीं होंगे बिकॉज आज की लाइफ बहुत बिजी है, आप अपनी जॉब में अपने परिवार में बिजी होंगे, लेकिन आप समय निकाल के दिन में एक बार चाहे 5 मिनट ही उनके पास जरूर बैठो, दादा दादी के पास। और यदि आप अपने दादा दादी के पास बैठते हैं, उनका मन इतना खुश हो जाएगा, तुम्हारे 5 मिनट बैठने से इतना खुश हो जाएगा, वे तुमको भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। मानो तुम कुछ काम पर जा रहे हो या कहीं दूर गए तो बैठे बैठे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद तो आपको मिलता है जो कि आपको पता नहीं है। कि मम्मा कुछ हम घर का काम जैसे माँ के साथ दादा दादी के साथ जरूर शेयर करना है, मम्मा आपको कुछ चाहिए मैं बाहर जा रहा हूँ। जैसे दादा दादी को मानो उनके चश्मे के लिए कुछ चाहिए,
1: उनके पसंद की कोई डिश चाहिए,
0: पसंद की डिश चाहिए, जरूर जस्ट इतने ही पूछ लोगे तो उनका दिल और उनसे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी, वो खुश हो जाएंगे, आपके साथ हमेशा आशीर्वाद रहेगा और आपका भी मन खुश रहेगा।
1: बिल्कुल, तो सगु जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और अपने जो व्यक्तिगत अनुभव है वो आपने बहुत अच्छी तरह शेयर किया। हमें उम्मीद है बच्चों को अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम मंजू शर्मा है, 66 एज है मेरी।
1: अच्छा।
2: और मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, बड़े बेटे के 2 बच्चे हैं, एक राधिका एक शिवम, छोटे बेटे के 1 बेटा है उसका नाम समृद्ध। लेकिन बच्चे मेरे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत मेरा ख्याल रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं।
1: आप कैसे समय बिताती हैं घर में रहती हैं तो?
2: मैं घर में रहती हूँ तो कुछ कुछ मेरे को क्रोशिया का, बुनाई का, सिलाई का, कढ़ाई का, ये सब का बहुत शौक रहता है।
1: जी, जी।
2: तो वो सब करती हूँ खाली समय में। फिर थोड़ा बहुत मैं अपना भगवान के कपड़े वगैरह, वस्त्र वगैरह बनाना, कुछ रामायण वगैरह कुछ पढ़ लेना, वो सब करती हूँ।
1: भजन भी गाती होंगी?
2: हाँ, भजन भी।
1: बच्चों को कुछ भजन सुनाइएगा।
2: जरूर सुनाऊंगी। श्री

0: जय।
1: मंजू जी, आपने बहुत अच्छी तरह ये भजन सुनाया, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। बच्चों से क्या कहना चाहेंगी, जो बच्चे आज दादा दादी को समय नहीं दे रहे हैं, माता पिता के साथ बैठते नहीं हैं, मोबाइल जो एक आज हमारे बीच है।
0: मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि अपने दादा दादी को जरूर समय दें, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज्ञान की बातें सुनने को मिलती है, अच्छा टाइम पास होता है उनका भी और बच्चों का भी। बच्चों को भी दादा दादी से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। मोबाइल भी देखें अपनी जरूरत के हिसाब से, देखें, ये नहीं कि हर वक्त मोबाइल पे ही रखें और उनकी तरफ ध्यान ना दें, ये ना करें।
1: जो बच्चे बुजुर्गों के साथ रहते हैं तो उनमें संस्कार भी पनपता है।

0: जी
1: है ना।
0: जी
1: रीति रिवाज जो हम
0: जी
1: भूलते जा रहे हैं,
0: जी जी
1: हमारे जो कल्चर है वो हम भूल रहे
0: जी अपने
1: हैं।
0: त्योहार,
1: हाँ
0: अपने
1: हाँ
0: अपना कल्चर, वो सब सब सबके साथ रहने से, दादा दादी के साथ रहने से वो सब उनको आता है, उनमें संस्कार अच्छे आते हैं आगे
1: बिल्कुल,
0: के
1: उनका
0: लिए।
1: आशीर्वाद
0: जी
1: हमेशा बना रहता है।
0: जी जी
1: ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू। सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद और खूब खुश रहे।
1: आपका शुभ नाम,
2: जुगल किशोर शर्मा।
1: घर में आपके कौन कौन
2: हाँ,
1: है,
2: घर में पूरा परिवार है, बेटा है, पोता पोती है, सब पूरा परिवार है।
1: कैसे समय बिताते हैं आप?
2: ज्यादातर समय हम पोता पोती के साथ ही बीतते हैं। मेरा बेटा पोती खूब प्यार करते हैं और बहुत अच्छा से टाइम पास कराते हैं मेरे, तो बहुत खुशी होती है। और सभी को यही कहेंगे कि अपने दादा दादी का खूब ध्यान रखें, उनके साथ एंजॉय करें और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
1: बहुत अच्छी बात है शर्मा जी कि आपको घर में भरपूर सहयोग मिलता है, बहुत आनंद के साथ आप समय बिताते हैं। आजकल के जो जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं, अपने बड़ों बुजुर्गों को सम्मान नहीं दे रहे हैं या समय नहीं दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे?
2: आज तो बच्चे लोग ज्यादातर मोबाइल में घुसे रहते हैं, उनको नहीं घुसना चाहिए, घुसे हैं, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन दादा दादी के साथ रहेंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दादा दादी भी खुश रहेंगे और उनकी भी हर डिमांड दादा दादी ज्यादा पूरा करेंगे जितना उनके माँ बाप नहीं करेंगे।
1: उनका आशीर्वाद हमेशा
2: हाँ,
1: रहेगा।
2: दादा दादी का तो प्राण ही उनके अंदर फंसता है, वो उन्हीं के लिए जीते हैं बुढ़ापा में, तो ये बच्चों को ध्यान रखना चाहिए।
1: बच्चों को ये सीख मिलनी चाहिए
2: हाँ
1: कि अपने बड़ों का ध्यान रखें,
2: हाँ
1: सम्मान करें। और कुछ कहना चाहेंगे?
2: बस यही कहेंगे कि दादा दादी को कभी मत भूलिएगा, खूब प्यार कीजिएगा, उतने दादा दादी खुश रहेंगे और ज्यादा लॉन्ग टाइम चलते रहेंगे और आप बच्चों को आशीर्वाद देते रहेंगे।
1: बहुत कुछ दादा दादी से आप सीख भी पाइएगा,
2: हाँ
1: है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, थैंक यू भाई।
1: बिल्कुल, संस्कारों और अनुभव का खजाना है हमारे बुजुर्ग। कहते हैं कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। जी हाँ, आज के इस आधुनिक युग में हम इंटरनेट के माध्यम से हर जानकारी तो कुछ पल में ही हासिल कर लेते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार और आचरण हमें परिवार के बुजुर्ग सदस्यों से बढ़कर कोई नहीं दे सकता। बुजुर्गों को मान सम्मान और भरपूर प्यार दें। अभी हम इसी विषय पर अपने बीच के ही कुछ सम्माननीय बुजुर्गों से बातचीत कर रहे थे। हमें उम्मीद है बच्चों कि उनके द्वारा अभी बताई गई बातों से आप प्रेरित होंगे, है ना बच्चों?
3: जी दीदी।
1: कुछ समय अपने घर के बड़ों के साथ बिताएंगे, उनका भरपूर आदर, सम्मान, देखभाल और स्नेह बनाए रखेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ तो दादी अम्मा ही रूठ गई हैं।

0: बच्चों और अब श्रृंखला मेरी बारी के अंतर्गत बच्चों के मुख से सुनते हैं। सार्थक क्या सुनाना चाहेंगे अपने दोस्तों को?
1: मैं दादा दादी पर कविता सुनाना चाहूंगा।
0: ठीक है सुनाइए।
1: मेरे दादा दादी अच्छे प्यार सदा ही मुझको करते, मेरी सारी बातें सुनते, जोर से फिर दोनों हंस देते, जब रोता हूँ पास बुलाते, गुदगुदी कर मुझे खूब हंसाते। धन्यवाद।
0: सार्थक अभी दादा दादी पर ये कविता सुना रहे थे, बहुत अच्छे सार्थक। और हमारे बीच मयंक भी हैं। मयंक आप कुछ सुनाना चाहेंगे अपने दोस्तों को?
2: मेरे दादाजी ने मुझे बहुत ही प्रेरणादायक कविता सिखाई है जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
0: ठीक है सुनाइए।
2: कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चरणों चर कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डुबकिया सिंधु में गोता खोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। इसे लिखा सोहन लाल द्विवेदी ने।
0: कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मयंक अभी ये कविता सुना रहे थे, बहुत अच्छे मयंक।
2: धन्यवाद दीदी।
0: सार्थक अपने दोस्तों को और कुछ सुनाना चाहेंगे?
1: जी दीदी, मैं एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहूंगा। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबो वाला था, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। ओ ओ ओ ओ ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। धन्यवाद।
0: सार्थक अभी देशभक्ति गीत अपने दोस्तों को सुना रहे थे। श्रृंखला मेरी बारी के अंतर्गत बच्चों के मुख से अभी हम सुन रहे थे।

बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और रक्तदान महादान है, इन विषयों पर सार्थक ने हमें बताया। मयंक ने हमें बताया कि उसने गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताई। बुजुर्गों को मान सम्मान और भरपूर प्यार दें, इस विषय पर कुछ बुजुर्गों के विचार भी हमने आपको सुनवाए, बच्चों के मुख से भी आपने सुन लिया। उम्मीद है बच्चों, आज का ये पल्लव कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता स्थिर चिंपी। इसके साथ ही आज का पल्लव कार्यक्रम बस यहीं तक। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अब सीमा दीदी को दीजिए अनुमति। जय हिंद बच्चों।

0: डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
0: हेलो डॉक्टर,
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर,
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। सुबह के 10 बजने को है श्रोताओं, अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हिंदी में। 10:05 पर होगा अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर होगा विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10:20 पर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। स्विट्जरलैंड में जनसंख्या 1 करोड़ तक सीमित करने के लिए जनमत संग्रह आज। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने मोरक्को के विरुद्ध 1-1 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय

0: मंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि फ्रांस में प्रस्तावित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश और भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। व्हाइट हाउस के अनुसार G7 शिखर सम्मेलन में अमरीकी आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर मित्र देशों के साथ सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता की सफलता की आशा है।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 जुलाई को तेहरान और 7 को पवित्र शहर कोम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। स्विट्जरलैंड में जनसंख्या सीमित करने के प्रस्ताव पर आज जनमत संग्रह हो रहा है। इस प्रस्ताव में देश की आबादी 1 करोड़ तक सीमित रखना है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो स्विट्जरलैंड जनसंख्या पर रोक लगाने वाला यूरोप का पहला देश बन जाएगा। देश की वर्तमान जनसंख्या 90 लाख से अधिक है, जबकि एक दशक पहले यह 80 लाख से कुछ अधिक थी। आबादी का 1/4 से अधिक हिस्सा विदेशी मूल के लोगों का है। यह प्रस्ताव देश के सबसे बड़े राजनीतिक समूह स्विस पीपल्स पार्टी ने रखा है। इटली की राजधानी रोम में कल प्रवासियों के मुद्दे पर विरोध और समर्थन में अलग अलग प्रदर्शन हुए। प्रवासियों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने की मांग वाली एक पहल को संसद में चर्चा के लिए आवश्यक 50,000 हस्ताक्षर मिल गए हैं। विरोध और समर्थन दोनों प्रदर्शनों में हजारों लोग शामिल हुए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि किसी प्रकार की हिंसा की सूचना नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने की पाकिस्तान सरकार की आशंकाओं के बीच विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों का बातचीत का प्रस्ताव ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अस्वीकार कर दिया है। कमेटी ने कहा है कि बातचीत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने कभी अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। समाचार एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तानी सरकार के लिए मौजूदा विरोध प्रदर्शनों से निपटना कठिन होता जा रहा है। इस बार विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी प्रवासी भी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन और अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। म्यांमार में कल रात 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। एक सप्ताह पहले भी म्यांमार में 3.5 तीव्रता का भूकंप आया था। म्यांमार मध्यम और तीव्र भूकंप तथा सुनामी के संकट के लिए संवेदनशील माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायण ने बेंगलुरु में बताया कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा था। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने अंतर

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद विश्व कप में जीत दर्ज करते हुए हैती को 1-0 से हरा दिया है। जॉन मैकगिन के पहले हाफ में किए गए गोल के बदौलत स्कॉटलैंड ग्रुप सी में शीर्ष पर पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। वहीं ग्रुप बी में कतर और स्विट्जरलैंड का मुकाबला भी 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। आज ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के बीच मैच खेला जा रहा है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। मैनचेस्टर में कल स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हरा दिया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी के लिए खोल दिया जाएगा। स्विट्जरलैंड में जनसंख्या 1 करोड़ तक सीमित करने के लिए जनमत संग्रह आज। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने मोरक्को के विरुद्ध 1-1 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:20 हो रहे हैं। कार्यक्रम फिल्म संगीत हम लेकर हाजिर होते हैं बस थोड़ी ही देर में।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर?
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

फिल्म बेताब का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं और धुन बनाई है आरजे बर्मन साहब ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से आप सुन रही हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गाना हमने लिया है फिल्म जैकपॉट से, आवाज अरिजीत सिंह की, बोल लिखे हैं तुराज और अजीम शराजी ने और धुन बनाई है शरीब और तोशी ने।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

फिल्म दिल तो पागल है का ये प्यारा सा ट्रैक श्रोताओं भी आपने सुना लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। इस गीत को कलमबद्ध किया है आनंद बख्शी साहब ने और धुन बनाई है उत्तम सिंह ने। अगला गाना हमने लिया है फिल्म बाकी से। आवाजें हैं मोनाली ठाकुर और मीट ब्रदर्स की, बोल लिखे हैं कुमार ने और धुन बनाई है मीट ब्रदर्स ने।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और अगला गाना हमने लिया है फिल्म फना से। आवाजें हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की, बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने और धुन बनाई है सलीम सलेमान ने।

फिल्म लगान का ये गाना श्रोताओं अभी आपने सुना उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, अलका याग्निक, शंकर महादेवन और शान की आवाजों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर और धुन बनाई है एआर रहमान ने। और श्रोताओं इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजने को है अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। 11:05 पर एक बार फिर से हम हाजिर होंगे कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर के साथ। दिन में 12:05 पर सुनिए का कार्यक्रम भाव गीत और 12:30 पर होगा कार्यक्रम अंगना। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र के साथ। दिन के 11 बजने को हैं, समाचार आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
2: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्वभर में लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है, मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मानसून के स्वागत का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दो तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुँचने की संभावना है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। फीफा विश्व कप में स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद जीत दर्ज करते हुए हैती को 1-0 से हरा दिया। जॉन मैकगिन के पहले हाफ में किए गए गोल की बदौलत स्कॉटलैंड ग्रुप सी में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

Skateboard. नमस्कार, जमशेदपुर कार्यक्रम के साथ आज मैं रंजना। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन के साथ। दोस्तों, हमारा जीवन संघर्ष, परिश्रम, धैर्य और निरंतर प्रयासों की एक लंबी कहानी है। संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनकी सफलता किसी एक दिन की चमत्कारी घटना नहीं थी, बल्कि वर्षों तक किए गए छोटे छोटे सतत प्रयासों का बड़ा परिणाम था। सफलता का कोई सुगम और सरल रास्ता नहीं होता, वह धीरे धीरे तपकर, गिरकर, संभलकर और निरंतर आगे बढ़ने से प्राप्त होती है। जिस तरह छोटी छोटी बूंदें मिलकर सागर का निर्माण करती है, उसी तरह मनुष्य के छोटे छोटे प्रयास बड़ी उपलब्धियों का आधार बनते हैं। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे लंबे समय तक किया गया श्रम और अनुशासन छिपा होता है। किसान बीज बोने के बाद प्रतिदिन उसकी देखभाल करता है। वह जानता है कि फसल एक दिन में नहीं उगेगी, परंतु यदि उसका प्रयास निरंतर रहेगा तो एक दिन खेत अवश्य लहलहाएगा। यही नियम तो मनुष्य के जीवन पर भी लागू होता है। महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलताएं झेली थी। जब उनसे पूछा गया कि वे हजार बार असफल कैसे हुए, तब उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल हजार ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। कुछ और भी हम बातें इस बारे में करेंगे, पहले गीत सुनते हैं।

गौरी बापत के आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे बुलेट फिल्म से। गीत और संगीत आनंद राज आनंद का था। श्रोताओं, हम बातें कर रहे हैं सफलता की कुंजी है छोटे छोटे निरंतर प्रयास। यदि मनुष्य हर असफलता के बाद पुनः प्रयास करता है तो सफलता उसके कदम चूमेगी ही। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे आवश्यक है एक अस्पष्ट लक्ष्य का होना। बिना लक्ष्य के प्रयास दिशाहीन हो जाते हैं। यदि मनुष्य एक निश्चित लक्ष्य तय कर ले और उसी दिशा में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ही सही प्रयास करते रहे तो धीरे धीरे सफलता निकट आने लगती है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को आत्मविश्वास और निरंतर कर्म का संदेश दिया था। उनका प्रसिद्ध वाक्य उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए जीवन का मूल मंत्र है। आज अनेक लोग असफलता मिलते ही निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद सफलता उनके भाग्य में ही नहीं है, जबकि सच यह है कि सफलता भाग्य से अधिक परिश्रम और निरंतर प्रयास पर निर्भर करती है। भाग्य अवसर दे सकता है, किंतु उस अवसर को उपलब्धि में बदलने का कार्य केवल हमारा श्रम ही करता है। वास्तव में बड़ी सफलता कोई कठिन काम नहीं है। आवश्यकता केवल मजबूत इच्छा शक्ति, अस्पष्ट योजना, अनुशासन और निरंतर प्रयास की होती है। इसलिए हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। कठिनाइयां आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लोग आलोचना करेंगे, किंतु जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहेगा और निरंतर काम करता रहेगा वही सफल होगा।

शंकर महादेवन की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे लक्ष्य फिल्म से। बोल थी जावेद अख्तर के, शंकर एहसान लॉय ने धुन बनाई थी।

श्रोताओं, एक गाना है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सची तो है, मानवता की एक बूंद किसी के चेहरे की मुस्कान बन जाए, यही तो सबसे बड़ा उपकार है। आज है विश्व रक्तदाता दिवस। वर्ष 2026 के लिए विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड सेव लाइफ। इसका आशय ही है रक्तदान बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ आप कई लोगों को नया जीवन दे सकते हैं, बल्कि कई बीमारियों को दूर भी भगा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर वर्ष लगभग 1.5 करोड़ यूनिट रक्त की

जरूरत है। कई बार सबको आसानी से रक्त नहीं मिलता, जिसके कारण हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में जरूरी है कि रक्तदान करें। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच है, वो रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान से पहले और बाद में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि रक्तदान करने वाले और रक्त लेने वाले दोनों को किसी प्रकार की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। रक्तदान करने से पहले पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार और पानी जरूर पी लें। अगर रक्तदान करने जा रहे हैं तो कम से कम 24 घंटे पहले कोई धूम्रपान या नशा नहीं करें। ब्लड डोनेट करने के बाद कुछ देर तक उसी तरह पर आराम करना चाहिए और लेटे हुए थोड़ा सा जूस या स्नैक्स लेना चाहिए। इसके 10 से 15 मिनट के बाद आप वहां से उठ सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक पानी, जूस जैसे अतिरिक्त तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए।

साजन बिना सुहागन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज में। गीतकार थे इंदीवर, संगीतकार उषा खन्ना। श्रोताओं, आज है विश्व रक्तदाता दिवस और रक्तदान महादान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। रक्तदान करना सिर्फ सामने वालों को ही फायदा नहीं पहुंचाता है, वो रक्त डोनेट करने वाले को भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। जैसे रक्तदान करने से आपका मुफ्त में फिजिकल चेकअप हो जाता है। आमतौर पर रक्तदान से पहले कुछ चेकअप जैसे नाड़ी, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, हीमोग्लोबिन लेवल आदि जांचे जाते हैं। यह आपके स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करता है, इसके साथ बीमारियों का भी पता लग जाता है। ब्लड डोनेशन से आप लंबे वक्त तक जवा बने रहते हैं और स्ट्रोक और हार्ट अटैक से भी बचाव होता है। डॉक्टर के अनुसार ब्लड डोनेशन करने से शरीर में आयरन की मात्रा सही बनी रहती है। आयरन की अधिकता से लीवर टिश्यू का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे वे डैमेज हो सकते हैं। ऐसे में नियमित रूप से रक्तदान करने से लीवर डैमेज और कैंसर का जोखिम भी कम हो जाता है। ब्लड डोनेशन से वजन नियंत्रित रहता है। एक बार ब्लड डोनेट करने से 650 से 700 कैलोरी आप घटा सकते हैं। ब्लड डोनेशन से मानसिक संतुष्टि भी मिलती है, क्योंकि आपके द्वारा डोनेट किए गए ब्लड से किसी की जान बचती है, नया जीवन दान मिलता है। इससे खुशी और मानसिक संतुष्टि मिलती है। रक्तदान करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनता है।

कॉकटेल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थी कविता सेठ और नीरज श्रीधर की, इरशाद कामिल के बोल थी और इस गीत को संगीत से सजाया था प्रीतम ने। और दोस्तों, प्रीतम का आज जन्मदिन है, आज ही के दिन 1971 में इनका जन्म हुआ था। एक प्रख्यात संगीत निदेशक, संगीतकार, गायक और वादक भी हैं। प्रीतम ने संगीत में अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण अपने पिता से प्राप्त किया। लगभग डेढ़ दशक के करियर में प्रीतम ने 100 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों के लिए संगीत की रचना की है। वर्ष 2004 की फिल्म धूम के टाइटल ट्रैक ने उन्हें फिल्म उद्योग में पहली बड़ी सफलता दिलाई और उन्हें उसी वर्ष 2004 में सर्वश्रेष्ठ ट्रैक के लिए जी सिने पुरस्कार मिला। प्रीतम के संगीत में शास्त्रीय संगीत और पश्चिम शैलियों का मिश्रण है। वह 2 फिल्म फेयर पुरस्कार, 4 जी सिने अवार्ड स्टार स्क्रीन, 3 और 3 आईफा पुरस्कार सहित कई अन्य अवार्ड जीत चुके हैं। प्रीतम फिल्म इंडस्ट्री से हटकर जी टीवी की गायन प्रतियोगिता के कार्यक्रम सारेगामा पा चैलेंज 2009 पर नई प्रतिभाओं को सवारने में भी अहम भूमिका निभाई है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर, आकाशवाणी जमशेदपुर से FM 102.4 MHz पर, और इस कार्यक्रम में आज है आपकी दोस्त रंजना। श्रोताओं, हर साल जून के महीने में मलेरिया रोधी माह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है मॉनसून से पहले मलेरिया की रोकथाम और लोगों के इसके प्रति जागरूक करना है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के संक्रमण के कारण होता है, जो संक्रमित मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है। इसके लक्षण हैं ठंड लगने के साथ तेज बुखार, अत्यधिक पसीना आना, सिर दर्द, बदन दर्द, कमजोरी, थकान। इससे बचने के लिए हमें कुछ बचाव करने होंगे, जैसे कि हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें, यानी कि उसके अंदर सोएं। मलेरिया के मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं, इसीलिए अपने आसपास जल जमाव नहीं होने दें। घर के आसपास या छत पर कोई भी ऐसी बेकार वस्तु नहीं रखें जिसमें पानी जमा होता हो। साथ ही छत पर पानी टंकी को खुला नहीं छोड़ें। मच्छर से बचाव के लिए हमें आसपास की सफाई रखनी चाहिए। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें, पानी के बर्तन को ढक कर रखें। बुखार होने पर अनदेखा नहीं करें, बुखार होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच कराएं। मलेरिया की पुष्टि होने पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवा लेनी चाहिए। मलेरिया रोधी दवा का सेवन बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, अपूर्ण उपचार नहीं कराएं, इसके पूरे डोज लेना जरूरी है। ताजा और सादा भोजन करें, तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें, बासी और अत्यधिक तेल मसाले वाले भोजन का सेवन नहीं करें।

अलका याग्निक और जावेद अली के युगल स्वर में ये गाना आप सुन रहे थे युवराज फिल्म से। शब्दकार थे गुलजार, संगीत दिया था यार रहमान ने। श्रोताओं, मादक पदार्थ यानी नशे के विरुद्ध हमारे पूरे राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम जनता को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना, अवैध तस्करी को रोकना और नशे के आदि लोगों को चिकित्सा और उन्हें परामर्श देना है। नशा एक ऐसी बुरी आदत है जो धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर, मन और जीवन को खोखला कर देती है। शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और अन्य मादक पदार्थ शुरुआत में भले ही कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराएं, लेकिन वास्तव में ये हमारे स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। नशे का पहला प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तंबाकू और सिगरेट का सेवन फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जबकि फेफड़ों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। गुटखा और तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं शराब का अधिक सेवन हमारे लीवर, हृदय, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। धीरे धीरे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती चली जाती है और वह कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। नशा केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इसकी लत लग जाने से व्यक्ति तनाव, चिंता और अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। उसके आत्मविश्वास में कमी आने लगती है और निर्णय लेने की क्षमता भी कमतर होती चली जाती है। कई बार नशे की अवस्था में लोग ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो जीवन भर के लिए पछतावा दे जाता है।

किशोर कुमार की आवाज थी। आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत पर। फिल्म थी इम्तिहान। श्रोताओं, नशा विशेष रूप से युवाओं को बर्बाद कर रहा है। हमारे देश जहां 40% आबादी 18 वर्ष से कम आयु की है, हमारी युवा ऊर्जा नशे की लत से बर्बाद हो रही है। यह समस्या एक महामारी का रूप ले चुकी है। आंकड़े के अनुसार 1.6 करोड़ युवा नशे की चपेट में हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। इनके लिए नशा विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि उनके भविष्य, शिक्षा और करियर पर ये बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालता है। दोस्तों, जीवन बहुत ही खूबसूरत है, तो क्यों ना हम खुश होकर आनंद से जिए। क्यों न हम जीवन की सारी खुशियों को अपनी दामन में समेट लें।

अंदाज टू फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे के सुजेन डिमेलो जोजो और निखिल डिसूजा की आवाज में, गीतकार थी शकील आजमी। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर यहीं पर संपन्न हुआ। दीजिए हमें अनुमति।

0: Schildkröte.
1: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशन को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारे प्रसारण FM 102.4 MHz पर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

श्रोताओं प्रस्तुत करते हैं भावगीत कार्यक्रम। ये नैन भी बड़े हरजाई होते हैं, बिना बोले बतला देते हैं दिल के हालात। नैनों के बार को बस पूछिए मत क्या कहा जाए। कभी झील सी गहरी आंखों में छुप जाते हैं राज, तो कभी कहानी बनकर सुना जाती है हाले दिल।

यादों की बारात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी के आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को रचा था, आरडी वर्मन ने संगीत तैयार किया था।

कब दिल से धड़कन अलग हुआ है, कब चांद से चांदनी की दूरी हुई है। आवाज दी है तुमने तो धड़का है दिल मेरा, कुछ खास फर्क नहीं है दोनों सदाओं में।

हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। पहले की कहानी और आज की हकीकत में कितना फर्क है। अपनी जज्बातों को मैं सुनाऊं कैसे, कैसे कहूं क्या क्या ख्वाब सजा रही है ये आंखें आपसे मिलने के बाद। कैसे सुनाऊं आपसे दिल के बागवान में झनकृत हो रहे

मोहम्मद रफी के स्वर में ये गीत आप सुन रहे थे कर्ज फिल्म से। बोल थी आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का था। कैसे जुदा हम करेंगे इन ख्यालों को, इन यादों को, इन लम्हों को अपने आप से, शबनमी ख्वाबों की तस्वीरों से। लवरेज ये दिल ये मन है जिसे मुश्किल है मिटाना, नामुमकिन है इन्हें मिटाना। सांसों की परिभाषा ये यादें ही तो होंगी।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे बेताब फिल्म से। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार आरडी वर्मन और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भावगीत यहीं पर संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम अंगना।

अंगना के सभी श्रोताओं को दोस्त और बहन जयश्री का प्यार भरा नमस्कार जोहार। बहनों, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज का दिन रक्तदान महादान को समर्पित है। जो भी रक्तदाता रक्तदान करते हैं उनके लिए आभार व्यक्त करने का दिन है। मानवता की सेवा का सबसे बड़ा संकल्प है रक्तदान महादान। हमारे द्वारा दिया गया रक्त किसी के लिए जीवन दान बन सकता है। बहनों, इसका मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक और बिना पैसे लिए रक्तदान करने वाले दाताओं के प्रति आभार व्यक्त करना और सुरक्षित रक्त की निरंतर उपलब्धता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2026 के लिए आधिकारिक अभियान का थीम जो है वो है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड सेव लाइव्स। मानवता की एक बूंद रक्त दें, जीवन बचाएं। ये थीम इस बात पर जोर देती है बहनों कि रक्तदान केवल एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये इंसानियत, करुणा और एकजुटता का एक गहरा मानवीय प्रतीक है। माना जाता है कि पूरी मानवता की झलक खून की एक सिर्फ एक बूंद में देखी जा सकती है और हमारा ये छोटा सा कदम समाज को एक जीवन रेखा प्रदान करता है। बहनों, जब आप एक यूनिट लगभग 350 से 450 ml रक्त दान करते हैं तो उससे लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को अलग करके 3 अलग अलग मरीजों की जान बचाई जा सकती है। ये दिन उन सभी नियमित और स्वैच्छिक दाताओं को समर्पित है जो बिना किसी स्वार्थ के नियमित रूप से ब्लड बैंकों और अस्पतालों में जाकर रक्त दान करते हैं। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में प्रसव, बड़ी सर्जरी, दुर्घटनाओं और थैलेसीमिया या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए समय पर सुरक्षित रक्त मिलना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस अभियान के तहत ड्रॉप योर ड्रॉप जैसी वैश्विक पहलों के माध्यम से लोगों को नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान करने का संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बहनों, रक्तदान हम और आप सभी कर सकते हैं जिनकी भी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच है, 45 किलो या फिर उससे ज्यादा वजन होना चाहिए, 50 किलो भी कई जगहों पर है, हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 ग्राम प्रति डीएल होना चाहिए, ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन भी सामान्य होनी चाहिए और सर्दी खांसी बुखार या कोई अन्य संक्रामक बीमारी है तो फिर कुछ दिन रुक जाना चाहिए। पुरुष हर 3 महीने में और महिलाएं 4 महीने में सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकती हैं। बहनों, रक्तदान के समय ध्यान देने वाली जो जरूरी बातें हैं वो ये हैं कि रक्तदान से पहले खुद को अच्छी तरह हाइड्रेट रखिए, पर्याप्त पानी या फिर जूस पी लीजिए, खाली पेट कभी भी रक्तदान मत कीजिए, डोनेशन से 2-3 घंटे पहले एक हल्का और आयरन से भरपूर भोजन जरूर कीजिए, रक्तदान करने से पहले रात को 7 से 8 घंटे की पूरी और अच्छी नींद लीजिए और डॉक्टर या ब्लड बैंक स्टाफ द्वारा पूछे गए फॉर्म में अपनी मेडिकल हिस्ट्री

0: बीमारियों और दवाओं की बिल्कुल सही जानकारी दीजिए। रक्तदान के दौरान बहनों जो प्रक्रिया होती है ना, उसे घबराइए मत। ये बिल्कुल सुरक्षित और लगभग दर्द रहित होती है। गहरी सांस लीजिए। ये सुनिश्चित कीजिए कि ब्लड बैंक का स्टाफ आपके लिए एक नई सीलबंद और स्टरलाइज्ड सुई का ही उपयोग कर रहा हो। रक्तदान के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक बेड या कुर्सी पर आराम से लेटे या फिर बैठे रहें। अचानक तेजी से उठने पर चक्कर आ सकते हैं। ब्लड बैंक के द्वारा दिए जाने वाले जूस, बिस्कुट या फल का सेवन तुरंत कीजिए, जिससे शरीर में शुगर का स्तर बना रहे। रक्तदान वाले हाथ से उस दिन भारी वजन मत उठाइए और कम से कम 4 से 5 घंटे तक कोई भी कठिन शारीरिक व्यायाम या मेहनत का काम मत कीजिए। अगले 24 से 48 घंटों में सामान्य से अधिक पानी और तरल पदार्थों का सेवन कीजिए। और बहनों, अगर रक्तदान के बाद आपको चक्कर आता है, पसीना आता है या कमजोरी महसूस होती है, तो तुरंत जमीन पर लेट जाइए और अपने पैरों को थोड़ा ऊपर उठा लीजिए या फिर किसी तकिए पर रख लीजिए। इससे मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह ठीक तरह से होता है और आप तुरंत बेहतर महसूस कीजिएगा। और जब हम बात कर रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस की, तो रक्तदान महादान, रक्तदान जरूर करें, इस विषय पर हम सुनते हैं वार्ता वॉलंटरी ब्लड डोनर एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष सुनील कुमार मुखर्जी से।
1: आज 14 जून हम लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट डे है, और वो इसलिए है कि 14 जून 1868 में डॉक्टर कार्ल लाइनस्टेनर ऑस्ट्रिया में जन्मे, और वो एक बायोकेमिस्ट एंड फिजिशियन अमेरिका में रहते थे। उसके पहले जेम्स ब्लंडल ने मैन टू मैन डोनेशन किया, उसमें देखा गया 80% मर जाते थे, 20% सर्वाइव होते थे। इसको लेकर के बहुत चर्चा हुआ, इसके लेकर के बहुत अनुसंधान भी हुआ, लेकिन 1901 में डॉक्टर कार्ल लाइनस्टेनर एवीओ ग्रुप का गुणक आविष्कार किया और पूरा वर्ल्ड को बताया। ए बी ओ ए बी, ये चार ग्रुप उन्होंने कहा। उसमें क्या हुआ, जस्ट ऑपोजिट रिजल्ट हो गया, 80% बचते थे, 20% डेथ। उनको नोबेल भी मिला उसी समय, लेकिन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ये 100% क्यों नहीं आया? आया उस शुभ घड़ी 1940 में उनके एक स्टूडेंट अलेक्जेंडर विनर के साथ मेल करके अफ्रीका का एक बंदर पाया जाता है जिसको रेसस मंकी कहा जाता है, वो मैकाउ ग्रुप का मंकी है। उसका ब्लड का एंटीजन अगर ह्यूमन का ब्लड का एंटीजन में मिलता है तो पॉजिटिव, नहीं मिलता तो नेगेटिव। इस तरह 8 ब्लड ग्रुप हुआ, ए बी ओ ए बी प्लस पॉजिटिव, ए बी ओ ए बी नेगेटिव, और 100% रिजल्ट आया। तो इसीलिए उनको कहा जाता फादर ऑफ ब्लड डोनेशन। और WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग आज के दिन 14 जून को इंटरनेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स डे के लिए किया गया। अब रहा जमशेदपुर में भीवीडीए झारखंड क्यों बना। 1973 में जमशेदपुर ब्लड बैंक बना, लेकिन वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन का कोई कल्चर नहीं था। हमारे इतने भव्य ब्लड बैंक है, अच्छे टेक्नीशियन है, अच्छे डॉक्टर है, अच्छे टेस्टिंग मटेरियल है, लेकिन ब्लड नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति ब्लड लेने आते, ब्लड बैंक बोलता आप रिप्लेसमेंट लाओ, तो रिप्लेसमेंट कहाँ से लेंगे, कल्चर तो नहीं था। तो जहाँ बाहर जाते थे प्रोफेशनल जो पेशेवर रक्त विक्रेता, ये जो करप्शन चलाया था, एक यूनिट ब्लड के लिए 400 से 4000 रुपया लेते थे, जमशेदपुर का हर आदमी देखता था, लेकिन क्रिएटिव लीडरशिप लेने में किसी को हिम्मत नहीं था और किसी को ज्ञान भी नहीं था। मैं सुनील मुखर्जी टेल्को का एक वर्कर थे, टेल्को का ब्लड कोऑर्डिनेटर थे। एवरी फ्राइडे हम कुछ डोनर लाते थे, तो हमने जब ये देखा कि हमने सोचा ये टाटा कल्चर नहीं है, तो हमने उन लोग से झगड़ा नहीं किया, क्योंकि वो पेट का सवाल है, वो तो हमको मार के गिरा देते। व्हाट आई हैव डन, आई हैव मोटिवेटेड विलेज, इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज, माइंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक भारत सेवाश्रम, रामकृष्ण मिशन, सिख गुरुद्वारा कमेटी, इस्लाम समाज, ये लोग के पास जाकर मोटिवेशन की, और उसका रिजल्ट ये है कि जमशेदपुर ब्लड बैंक का जो ब्लड स्टोर है हमेशा भरा है। अब रहा जमशेदपुर का, तो हम लोग कर दिए। अब हमारे जो फाउंडर चेयरमैन मिस्टर सरोज जय गांधी, जो रेसिडेंट डायरेक्टर ऑफ टाटा मोटर, उन्होंने कहा कि आप लोग तो जमशेदपुर का एक नंबर कर दिया, लेकिन झारखंड में अभी भी भ्रष्टाचार चल रहा है। तो हम लोग का टीम झारखंड का दौरा किया, 2400 जिला में गए, और 18 जिला में अभी तक भी

पीडीए फॉर्मेशन किए और उसका नतीजा आस्ते आस्ते वहाँ पर प्रोफेशनल हट करके सेफ ब्लड। वाई पीपल रिलेक्टेंट टू ब्लड? ब्लड देने में डरते क्यों हैं? ये डर हमारा भी था, लेकिन एक बार अगर हम ब्लड दिए तो डर हट गया। अब डर इसलिए है कि लैक ऑफ एजुकेशन है। हमको डर है सुई भोंकने का, हमको डर है शरीर खराब हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, हमको डर है कि कोई आज तक नहीं बोला हमको ब्लड देने। दीज आर द रीजन फॉर ब्लड नहीं देते। तो हम लोग क्या किए, सबको बोलते थे कि आपको तो मच्छर काटा होगा। बोला हाँ। मच्छर काटने का दर्द अब बर्दाश्त किए? बोला हाँ। तो मच्छर काटने से तो अक्सर वो मलेरिया सप्लाई करता आपका शरीर, उसी मच्छर काटने का दर्द अगर आप बर्दाश्त किए तो ब्लड डोनेशन में एक ही मच्छर काटने का दर्द होता है जो लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर में प्रिक होता है, यही ब्लड डोनेशन का दर्द है। अगर ये हम बर्दाश्त कर लें तो हमारे माँ या बाबूजी या कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट है तो उनको हम सकुशल घर ले आ सकते। अब ब्लड क्या है? ब्लड दो चीज का मिश्रण है, सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड को हम सेल कहते हैं, कोश, उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट है, और लिक्विड को हम प्लाज्मा कहते हैं जो सिर्फ वाटर है विद 0.2 ग्राम प्रोटीन। आरबीसी का लाइफ स्पैन वो बचते हमारे शरीर में 120 रोज। कितने भी कोशिश कीजिए आरबीसी को आप 120 रोज के बाद बचा नहीं सकते। जो हम बचा नहीं सकते उसको अगर हम दे दें तो तीन आदमी का जान बचेगा। ये WHO का कहना है, मेरा कहना नहीं है, कि आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन। अब ब्लड क्यों लगता है? एक्सीडेंट, पूरा शरीर का खून निकल जाते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बोला हम कुछ नहीं कर सकते, पहले ब्लड लाइए तब हम इसका उपचार करेंगे, मेडिसिन देंगे, ऑपरेशन करेंगे, बिना ब्लड का हम छुएंगे नहीं पेशेंट। इस अवस्था में ब्लड डोनेशन अवश्यंभावी हो जाता है। उसके बाद हार्ट ऑपरेशन 6 बोतल, किडनी ट्रांसप्लांटेशन 8 बोतल, लीवर ट्रांसप्लांटेशन 40 यूनिट, इस तरह से ब्रेन ऑपरेशन, गायनोकोलॉजिकल ऑपरेशन, ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन, इस सब में ब्लड लगेगा। ब्लड बिना पेशेंट छुएगा नहीं। मानिए कि आप बोले डॉक्टर साहब हार्ट ऑपरेशन में कितना खर्चा है, बोले 5 लाख, हम 10 लाख देंगे, हम ब्लड नहीं जुगाड़ कर सकेंगे। तो बोला नमस्कार, आप पेशेंट को लेके जाइए, हम उसको छुएंगे नहीं, पहले ब्लड लाइए देन आपको हम डेट देंगे। एक अवस्था में ब्लड डोनेशन इज अवश्यंभावी। उसके बाद बॉन्ड केस, आपको मालूम है टिस्को टाटा स्टील में बॉन्ड केस में कितने आदमी कैजुअलिटी हो गया था, उसको बचाने के लिए ब्लड चाहिए था। उसके बाद गायनोकोलॉजिकल PPH पोस्ट प्रेगनेंसी हेमरेज, माँ बच्चा प्रसव करने के टाइम में अगर उसका यूट्रस रप्चर हुआ तो शरीर का पूरा खून निकल जाता है, उनको बचाने के लिए रक्तदान अवश्यंभावी, नहीं तो जच्चा बच्चा को हम बचा नहीं सकते। और उसके बाद कुछ ऐसे बीमारी है जिसका कोई मेडिसिन नहीं है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, एप्लास्टिक एनीमिया, कैंसर, ब्लड कैंसर, इसमें ब्लड चाहिए, मेडिसिन नहीं है, इसमें सिर्फ ब्लड चाहिए। तो इस अवस्था अगर हमारे पास आ जाए तो हम क्या करें? हम चुपचाप बैठे रहे? हमने एक तो कहानी सुना, ये जो शुतुरमुर्ग चिड़िया है ना, उसका लंबा लंबा पाव होता है, बहुत फास्ट रनिंग करता है, उड़ने नहीं सकते, वो डेजर्ट में रहता है। देखा कि शेर खड़ा है, वो क्या किया, अपना चोंच को बालू में घुसा दिया। नतीजा क्या हुआ, 10 मिनट के बाद कुछ पंख गिरा है, उसको शेर खा गया। तो हम क्या बालू में चोंच घुसा दें या इसके लिए कुछ आंदोलन करें? तो इस तरह से VVDA का निर्माण हुआ। अब देखिए, अक्सर लेडीज का ब्लड हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, कारण टाइम पर खाते नहीं। अगर अपने हस्बैंड को अपने बच्चे को सब खिला दिया, लास्ट में जो बचा उचा उसी को खाते हैं, और जंक फूड ज्यादा खाते हैं लोग, इसीलिए उसका हीमोग्लोबिन कम होता है। तो हीमोग्लोबिन कम होने से एक टिप्स हम देना चाहते हैं कि खजूर और चना, कल वाला चना, अंकुरित चना सुबह में एक मुट्ठी खाइए। अमरूद बहुत आयरन है, बहुत सस्ता भी है, इजी अवेलेबल है, एक अमरूद डेली खाइए, नहीं तो एक एप्पल खाइए, नहीं तो हरा साग सब्जी खाइए। जो फल या सब्जी काटने से हाथ काला हो जाता है उसमें बहुत आयरन है, उसका सेवन कीजिए। और लास्टली कूले खड़ा पत्ता है, उसको पानी में बॉयल करके वो पानी पीजिए सुबह 7 रोज। उसके बाद अगर वो नहीं हुआ तो उसको पीस करके शरबत के माफिक पीजिए। अगर ये आपको पसंद नहीं है तो बेर्नोलिया का कुलेरॉन सिरप है, उसको लीजिए तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। याद रखिए, हीमोग्लोबिन कम होना बहुत बड़ा बड़ा बीमारी को न्योता देने के बराबर होता है। तो ब्लड कौन दे सकता है? 18 से 65 साल उम्र जिसका है। दूसरा, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम, ये होता है हीमोग्लोबिन, एक प्रिक करते हैं रिंग फिंगर में लेफ्ट हैंड का,
एक ड्रॉ

0: जिसका जॉन्डिस हुआ एक साल नहीं हुआ, जिसका ट्यूबरक्लोसिस हुआ 5 साल के बाद वो दे सकते हैं, उसके बाद टैटू किया या टीथ प्रिकिंग किया नहीं दे सकते, रात में नाइट शिफ्ट किया वो दिन में नहीं ब्लड डोनेशन कर सकते, उसका सफिशियंट सोना बहुत 6 घंटा सोना जरूरी है। और उसके बाद जो आपका रामनवमी हो या शिवरात्रि हो या ईद का फास्टिंग हो, फास्टिंग पीपल कैनॉट डोनेट ब्लड। ब्लड देने का पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिए और उसके बाद आइए, 10 मिनट समय लगता है, और उसके बाद कॉफी या बिस्किट दे करके, कॉफी बिस्किट ब्लड देने के बाद खाने का जरूरत नहीं, इस बहाने में आपको 10 मिनट डॉक्टर के सामने बैठा के रखता है, ताकि जो आप झटका मारिएगा ब्लीडिंग होगा तो एक डीमोटिवेशन हो जाता है, तो हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। अब रहा व्हाई आई शैल डोनेट ब्लड, हमको ब्लड डोनेशन का क्या जरूरत है। देखिए हर व्यक्ति अपने घर से निकलते हैं अपने फायदा सोच, रक्तदान में आपका फायदा क्या है। पहला तो यू कैन नो योर ब्लड ग्रुप, हमको सब कुछ मालूम है दुनिया का, लेकिन ब्लड ग्रुप ने कितना मूर्खतापूर्ण बात है, अपना ब्लड ग्रुप जो हमको बचा के रखा है उसका नाम ही हम नहीं जानते। तो ब्लड ग्रुप जानने से अब बाहर में जाएंगे 300-400 रुपया ले लेंगे, ब्लड डोनेशन में आएंगे एब्सोल्यूट फ्री। उसके बाद आप अगर ब्लड देंगे, एक यूनिट ब्लड दिए लेकिन आपका बाबूजी या माँ को 3 यूनिट ब्लड चाहिए, बिकॉज आप एक यूनिट ब्लड दिए उसके एवज में आपको 3 यूनिट ब्लड मिलेगा। हम बैंक अकाउंट किए, आपको हमारा बैंक से पैसा मिलेगा नहीं, आपको भी अकाउंट खोलना होगा। तीसरा फायदा है बोन मैरो सेल क्रिएट करते, खाने पीने से ब्लड नहीं होता, सॉरी बोन मैरो सेल क्रिएट करते हैं। हम सिस्टम से अगर 350 ml दे देंगे तो वहाँ खाली हो जाएगा, वो खाली को भरपाई करता बोन मैरो, इमीडिएट थ्रो करता है आरबीसी। तो अगर हम नियमित रूप से ब्लड देंगे तो हमारा बोन मैरो सक्रिय रहेगा। चौथा, हार्ट डिजीज नहीं होते। अच्छा हमको बताइए, लेडीज का हार्ट डिजीज होता है या जेंट्स का? तो अनायास एक आंसर आएगा, जेंट्स का हार्ट डिजीज ज्यादा होता है। आप सही कह रहे हैं, क्यों लेडीज का क्यों नहीं होता? कि ईश्वर ने उसको माहवार के रूप में सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड एवरी मंथ निकल जाता, वो खाली जगह को भरपाई करता है, नया ब्लड आता है, और वो नया ब्लड हार्ट के थ्रू संचालन होता है, तो हार्ट एज इट इज रहता है। और कुछ फायदा है, आप ब्लड देने के पहले जो जो टेस्ट हम बताएं, वो टेस्ट अगर आप बाहर करने जाएंगे 1-2 हजार रुपया डॉक्टर ले लेंगे, ये एब्सोल्यूट फ्री। और ब्लड देने के बाद ब्लड बैंक में क्या टेस्ट होता है, HIV, मलेरिया पैरासाइट, जॉन्डिस, BMC, सेक्सुअल डिजीज, क्रॉस मैचिंग, ब्लड ग्रुप, ये बाहर करेंगे 8-10 हजार रुपये, यहाँ पर एब्सोल्यूट फ्री। तो इतने फायदे हमारा है, और इसीलिए हम आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, डरना तो स्वाभाविक आदमी का मनोवृत्ति है, ये हम मानते हैं, लेकिन एक बार अगर आप ब्लड दे दें तो आपका डर जिंदगी भर के लिए भाग जाएगा। आप नियमित ब्लड डोनर, जितने भी ब्लड डोनर, सेंचुरी ब्लड डोनर ब्लड डोनेट किए, उनको पूछिएगा कि पहले वो डरते थे कि नहीं, एक बार डर हटाइए और देखिए। जमशेदपुर ब्लड बैंक को हम लोग एक सपना देखे थे कि आदमी आएगा, रिक्विजिशन जमा करेगा, ब्लड लेके जाएगा, नो रिप्लेसमेंट, उसको हम लोग कायम किए। लेकिन ये गर्मी का 3 महीना, अप्रैल मई जून, थोड़ा टफ है, आदमी का मिथ है, आदमी का भ्रम चिंतन है कि हम गर्मी में ब्लड देने से हम बीमार पड़ जाएंगे। वेरी वेरी सॉरी, ये भावना आपका मन से हटा दीजिए। कोई भी डॉक्टर के पास जा करके बोलिए कि रेडियो में हमने सुना, ये सही है या गलत, तब आपको विश्वास होगा। आपसे निवेदन है, आप आए, निडर होकर आए, और एक बार ब्लड देने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस हुआ वो आस पास के और सब आदमी को बताएं, ताकि ये लोग सब, अभी हम मानव है लेकिन हमको मानव नहीं कहलाएगा जब तक नहीं हम कोई मानव को सेवा करेंगे। भगवान ने हमारा जन्म दिया, लेटेस्ट थिंग व्हाई गॉड सेंड मी इन द वर्ल्ड, अगर ये आपका भावना आ जाएगा तो आप हंसी हंसी चेहरा लेकर के ब्लड बैंक आएंगे या कैंप करेंगे, ब्लड देंगे। धन्यवाद।
1: बहनों अभी आप सुन रही थी वार्ता, रक्तदान महादान, रक्तदान जरूर करें, इस विषय पर वार्ता। वार्ता का अर्थ है सुनील कुमार मुखर्जी। सुनील कुमार मुखर्जी जी ने बेहद ही अच्छी और ज्ञानप्रद जानकारियां हम सबके साथ साझा की। इतनी सुंदर जानकारी के बाद हम ये तो जरूर जान गए बहनों कि रक्तदान करना बेहद जरूरी है, ये कई जिंदगियां बचा सकती हैं, हमारी भी और हमारे अपनों की भी। अगर किसी के चेहरे पर हमारी वजह से मुस्कुराहट आती है तो कितना अच्छा लगता है ना?

सुकून मिलता है। इसी बात पर मुझे अनारे फिल्म का वो गीत याद आया जिसे शैलेंद्र ने लिखा है और शंकर जयकिशन ने संगीत से सजाया है, और आवाज़ है मुकेश की। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

बहनों, दुनिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों और महिलाओं के साथ ही बुरा व्यवहार होता है या उनका ही शोषण होता है। जब भी शोषण और असुरक्षा की बात आती है तो हमारा ध्यान अक्सर बच्चों या फिर महिलाओं की तरफ जाता है, लेकिन समाज का एक बेहद संवेदनशील हिस्सा, हमारे बुजुर्ग और वयस्क भी अक्सर चुपचाप हर तरह का शोषण सहते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण बड़ों को भी सुरक्षा और सम्मान की बहुत जरूरत होती है। बहनों, बुजुर्गों या वयस्कों का शोषण केवल शारीरिक चोट तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये कई रूपों में हमारे समाज के भीतर छुपा हुआ है। ये

0: आज के समय में सबसे आम है कि बुजुर्गों की मर्जी के बिना उनकी पेंशन, जमा पूंजी या जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं या उन्हें धोखे से कागजों पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करते हैं। बड़ों को ताने मारना, उनसे बात न करना, उन्हें परिवार के फैसलों से अलग थलग कर देना या ये एहसास कराना कि वे अब परिवार पर एक बोझ हैं, ये उनके मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह तोड़ देता है और ये भी शोषण है। समय पर खाना न देना, बीमारी की हालत में दवाइयाँ और डॉक्टर के पास न ले जाना और उनकी बुनियादी ज़रूरतों जैसे साफ सफाई, कपड़े, इन सब पर ध्यान न देना भी शोषण की श्रेणी में आता है। बहनों, शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के कारण उनके साथ मारपीट करना या उन्हें किसी कमरे में बंद रखना भी शोषण है। हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। जीवन भर समाज और परिवार को सींचने वाले बुजुर्गों को सुरक्षा मिलना उनका अधिकार है, कोई एहसान नहीं। बच्चे या बाहरी लोग जब शोषण करते हैं तो बुजुर्ग अक्सर लोक लाज या बच्चों का करियर खराब ना हो इस डर से शिकायत नहीं करते। इसलिए समाज और कानून को आगे बढ़कर उनकी ढाल बनना होगा। इसी कारण से हर साल 15 जून को दुनिया भर में विश्व वयस्क शोषण जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 2011 में की गई थी, जिसके बाद हर साल 15 जून को ये वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ही है, बहनों, दुनिया भर के लोगों, समुदायों और सरकारों का ध्यान बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण की तरफ खींचना है। ये दिन याद दिलाता है कि बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। वर्ष 2026 के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन की आधिकारिक थीम जो है वो है स्पॉटलाइट ऑन एल्डर अब्यूज, बिल्डिंग ग्लोबल ब्रिजेस फॉर प्रोटेक्शन एंड डिग्निटी। बुजुर्गों के शोषण पर प्रकाश, सुरक्षा और गरिमा के लिए वैश्विक पुलों का निर्माण। ये थीम इस बात पर जोर देती है कि बड़ों के खिलाफ हो रहे अदृश्य शोषण को स्पॉटलाइट में लाया जाए, यानी उस पर खुलकर बात की जाए। साथ ही दुनिया भर में ऐसे नियम और कानून और सामाजिक ताने बाने बनाए जाएं जो बुजुर्गों को केवल सुरक्षा ही ना दे बल्कि समाज में उनकी खोई हुई गरिमा और सम्मान को भी वापस लौटाए। अपने घर और आसपास के बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनकी बात सुनिए। कई बार अकेलेपन के कारण वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बुजुर्गों के उनके कानूनी अधिकारों, जैसे हमारे यहाँ माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 और वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के तरीकों के बारे में उन्हें जागरूक करना जरूरी है। अगर आपको अपने आस पड़ोस में किसी बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार की भनक लगती है तो चुप रहने के बजाय संबंधित अधिकारियों या सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन 145-67 की मदद लीजिए, उस पर कॉल कीजिए। हमारा देश तो संयुक्त परिवार का प्रणेता रहा है और आज भी कई इलाकों में संयुक्त परिवार अब भी बेहद खूबसूरती के साथ अपनी गरिमा और अपना अस्तित्व बनाए हुए है। फिर भी शहरीकरण, बाजारवाद, भौतिकवाद के इस बयार में कहीं न कहीं हमारे बुजुर्गों की अनदेखी हो रही है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। जो माता पिता, जो बुजुर्ग हमें अपने खून और पसीने से सींचते हैं, उनकी उपेक्षा ही उनके लिए सबसे बड़ा कष्ट है, तो उनका शोषण करना तो ऐसा कह सकते हैं कि ऊपर वाला भी क्षमा ना करे। मानव हैं, मानवता को जिंदा रखिए। और फिलहाल वक्त का ये इशारा है कि हमें आपसे लेनी होगी विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इसी दुआ और शुभकामनाओं के साथ अपनी दोस्त और बहन जयश्री को दीजिए विदा। पुनः मिलने के वादे के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार।
1: अंगना, महिलाओं का कार्यक्रम अपना अंगना।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम अंगना। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रसारित होंगे। 1:10 से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की समगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Bharat Innovates in Nice, France in a short while from now alongside French President Emmanuel Macron. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation will bring together more than 120 Indian startups, global investors, technology leaders and entrepreneurs, showcasing India's rapidly expanding innovation ecosystem. Later in the day, Prime Minister Modi and President Macron will hold bilateral talks to review progress in the India-France Special Global Strategic Partnership and discuss key regional and global issues. Prime Minister Modi yesterday reached Nice in France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. Prime Minister Narendra Modi says India has worked to make quality healthcare more affordable and accessible over the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the nation feels proud when it is known as the country with the world's largest healthcare program, that is Ayushman Bharat, which provides top quality healthcare to the most vulnerable people. He said efforts like PM Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana have made medicines affordable. The White House has said that U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world leaders during next week's G7 summit in France. A senior administrative official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. In Jharkhand, 7 people, including 3 women and a 10-year-old boy, have died in separate lightning strike incidents across the state over the past 24 hours. Police said 2 people lost their lives in Ranchi and 2 people died in Garhwa district. The other fatalities were reported from Chatra, Giridi and Saraikela Kharsama districts. Authorities have sent the bodies for post-mortem examination. Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, the ISRO chief explained that Chandrayaan 3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on Moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the Moon for up to 200 days. A case has been registered against a US-based organization and 6 others following a complaint by the Enforcement Directorate ED alleging the illegal utilization of foreign funds through a network of foreign debit cards, including in left-wing extremism-affected areas of the country. Based on the ED complaint, Bengaluru's Kothanur police registered the case on June 11 under various provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita and the Unlawful Activities Prevention Act. A historic cultural milestone was achieved in Colombo today as more than 5,000 Bharatanatyam dancers performed together, clinching the Guinness World Record for the largest Bharatanatyam dance lesson. The event, organized by Sangamam Global Academy India and Sangamese Lia Sri Lanka, was held at Gale Phase Green in Colombo and brought together thousands of dancers from Sri Lanka, India and several other countries. The event aimed to showcase the timeless tradition of Bharatanatyam while fostering cultural ties across borders. Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over parts of northeastern region, Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. According to the IMD, conditions are favourable for the further advance of the southwest monsoon into some more parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, additional parts of Odisha and parts of South Chhattisgarh during the next 2 to 3 days. Australia made a dream start to their FIFA World Cup 2026 campaign, defeating Turkey 2-0 in their Group D opener. Goals from Nestori Ayankunda and Connor Metcalf capped 2 clinical counter-attacking moves as the Socceroos claimed all 3 points. Australia remained compact and organised throughout the contest, frustrating their opponents and capitalising on their chances. And that is the end of this news bulletin.

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वस्थ भारत निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का झारखंड दौरा। रांची में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन आंदोलन बनाने के लिए तैयारियां तेज। 21 जून को राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर होंगे कार्यक्रम। सरायकेला के कुकुडू नक्सली घटना के 7 साल पूरे। शहीद जवानों को किया जा रहा याद। दुगनी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। और 18वीं झारखंड राज्य सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का सरायकेला में उद्घाटन। 22 जिलों से आए 165 खिलाड़ी ले रहे भाग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है। वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा सुशासन और जन कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रम के तहत पदयात्रा, स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण जैसे जन सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज रांची पहुंचे। उन्होंने तेतर टोली तालाब के समीप आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने तालाब परिसर में चलाए गए स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया और साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कई अन्य कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ निरंतर सेवा दे रहे हैं। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनी नगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प दोहराया। कहा कि इसके लिए योजनाओं को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा, इसमें जन सहभागिता रहेगी।
1: ये वर्षों के अथक परिश्रम का प्रश्न है और ये सरकार की मनोदशा को चिन्हित करने वाली बात है। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को जन आंदोलन के रूप में, जन सहभागिता के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया जा रहा है।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। उन्होंने रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है, मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें जीवन बचाएं। झारखंड के सभी जिलों और प्रखंडों में विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत निःशुल्क ब्लड ग्रुप और हेमोग्लोबिन जांच के साथ रक्तदान शिविर, जागरूकता कार्यक्रम, शपथ समारोह और स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया है। इधर सिमडेगा में सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम सुंदर सामद ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने रक्तदान महादान का संदेश देते हुए समाज को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया।
2: आज विश्व रक्तदाता दिवस है। प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाई जाती है और खास करके हमारे जो रक्तदाता हैं, जो कि रक्तवीर हैं, उनको सम्मान देने के उद्देश्य से ये रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है। रक्त केंद्र सिमडेगा में, इसमें जितने रक्तदाता हमारे सिमडेगा जिले में हैं, उन लोग हम लोग सम्मानित करेंगे।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक सह आयुष निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को जन आंदोलन बनाने के लिए 21 जून को राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर योग कार्यक्रम होंगे। स्कूल, कॉलेज, पार्क, वृद्धाश्रम, अस्पताल, पुलिस स्टेशन और सरकारी संस्थानों में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत सामूहिक योगा अभ्यास कराया जाएगा, जिसमें जन प्रतिनिधि, पुलिस, एनसीसी कैडेट, आंगनबाड़ी सेविकाएं और आम नागरिक शामिल होंगे। इस वर्ष की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावा में कुकुडू साप्ताहिक हाट में नक्सली हमले में शहीद हुए 5 पुलिसकर्मियों की स्मृति में आज पुलिस केंद्र दुगनी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी सहित जिले के सभी वरीय एवं पुलिस पदाधिकारी भाग लेकर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 14 जून 2019 को कुकुडू हाट में परिसर में नक्सली हमले में एक एएसआई समेत 5 पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हुए थे।
3: नक्सलियों के द्वारा हमारे 5 वीर जवान शहीद हुए थे। हम लोग दिवस शहीद सम्मान मनाते हैं, जिनमें उनके आश्रितों को हम कुछ सम्मान टोकन स्वरूप देते हैं और इस दिन को याद करते हैं, हमारी स्मृति में रखते हैं, ताकि हमारी आज के और भविष्य के भी जो पुलिस की जो पीढ़ियां हैं वो उनकी कुर्बानी को याद रखे।
0: जमशेदपुर में टाटा स्टील की सुरक्षा टीम ने एक बड़ी चोरी की घटना को विफल करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में तांबे की केबल बरामद की गई है, जिसे कथित तौर पर प्लांट परिसर से चोरी कर बाहर ले जाने की तैयारी की जा रही थी। बिष्टुपुर थाना प्रभारी अशोक दुबे ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। धनबाद जिले में किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ कृषि विभाग ने कार्रवाई की है। बलियापुर क्षेत्र में जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक कुमार के नेतृत्व में उर्वरक, बीज और कीटनाशी दुकानों की जांच के दौरान एक प्रतिष्ठान में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। बिना लाइसेंस चल रही उर्वरक बीज दुकान को कृषि विभाग ने सील किया।
4: मामला सिर्फ इतना है कि जो न्यू दीपक बीज भंडार है, इनके प्रतिष्ठान में अवैध रूप से कीटनाशी है वो पाया गया है। इनके पास अनुज्ञप्ति नहीं थी, साथ ही साथ बीज और खाद में कुछ अनियमितताएं भी पाई गई हैं। उस व्यवस्था को देखते हुए जो में इनको स्पष्टीकरण, और चूंकि अवैध रूप से ह्यूज अमाउंट में पेस्टिसाइड है जो जहर है और एक्ट के अंतर्गत प्रोहिबिटेड है, बड़ी मात्रा में पाया गया है।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,52,000 रुपए प्रति किलो है। रामगढ़ जिला स्थित सिद्धू कानू मैदान में 21वीं उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र बोकारो के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। आईजी ने कहा कि खेल केवल जीत हार का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, समर्पण और टीम वर्क का सबसे बड़ा पाठ भी सिखाता है।
5: झारखंड पुलिस का हर साल इवेंट होता है, उसी के अंतर्गत इस बार ये रामगढ़ जिला में हो रहा है। सभी 5 जिला से प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कई प्रकार की इवेंट है इसमें। हाँ, ये पुलिस में एक बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर कि सबसे पहले रेंज लेवल पे एक टूर्नामेंट होता है जिसमें की सभी जिले पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो बढ़िया परफॉर्म करेगा उनकी रेंज की एक टीम बनेगी जो स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी।
0: झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में सरायकेला खरसावा में 18वीं झारखंड राज्य सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य के 22 जिलों से आए 165 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वस्थ भारत निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का झारखंड दौरा, रांची में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन आंदोलन बनाने के लिए तैयारियां तेज, 21 जून को राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर होंगे कार्यक्रम। सरायकेला के कुकुडू नक्सली घटना के 7 साल पूरे, शहीद जवानों को किया जा रहा है याद, दुगनी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन और 18वीं झारखंड राज्य सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का सरायकेला में उद्घाटन, 22 जिलों से आए 165 खिलाड़ी ले रहे भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
7: ज्ञान विज्ञान
8: इतिहास के पन्नों से,
9: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
10: मौसम का मिजाज,
7: अपने शहर की खबरें,
9: बातों मुलाकातों के साथ
10: सुरीला मनोरंजन
7: और भी बहुत कुछ।
6: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
9: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
6: नमस्कार जमशेदपुर।
0: आइए सुनिए फिल्म संगीत।

धुरंधर द रिवेंज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जैस्मिन सैंडल्स रिवल और शाश्वत सचदेव की आवाज में। गीतकार थी जैस्मिन सैंडल्स, संगीत दिया था शाश्वत सचदेव ने।

धड़क टू फिल्म का ये गीत था। आप सुन रहे थे दर्शन रावल और जोनिता गांधी की आवाज में। गीतकार थे गुरप्रीत सैनी, संगीतकार रोचक कोहली। अगला गीत आइए सुनते हैं भूत बंगला फिल्म से। कुमार की रचना है, प्रीतम ने संगीत दिया है। आवाजें हैं विशाल मिश्रा, नकाश अजीज और अंतरा मित्रा की।

डॉक्टर, आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

0: सोनू निगम, पलक मुच्छल और साथियों की आवाजें थी। अनु मलिक के संगीत पर यह गीत आप सुन रहे थे बॉर्डर टू फिल्म से। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी जमशेदपुर से। अगला गीत आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: जलवायु परिवर्तन हमें कैसे प्रभावित करता है, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए एक खतरा है, क्योंकि यह ताजा पानी कम करता है, भोजन की सप्लाई में रुकावट डालता है और वायु की क्वालिटी को खराब करता है। इसका असर खासकर गरीब लोगों पर पड़ता है। यह जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाता है और लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल देता है। गर्मी की लहर, बाढ़ और सूखा जैसे मौसम अब बार बार हो रहे हैं, जिससे लोगों को नुकसान होता है और उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन तटवर्ती और बाढ़ प्रभावित इलाकों से पलायन का बढ़ावा दे सकता है। कुछ क्षेत्रों को थोड़े समय के लिए लाभ हो सकता है, लेकिन अधिकतर को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह एक चौंकाने वाली बात है। करीब 10 लाख पौधे और जानवरों की प्रजातियां विलुप्त होने के किनारे पर हैं, और कई तो अगले कुछ दशकों में ही गायब हो सकती हैं।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर से कार्यक्रम फिल्म संगीत। बड़े मियां छोटे मियां, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं अरिजीत।

ये थे अरिजीत सिंह और निकिता गांधी वार टू फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शब्दकार थे अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार प्रीतम।

विशाल शेखर की धुन थी कुमार की रचना, आवाजें थी विशाल दादलानी, शेखर रवजियानी और बी प्राक की, फिल्म थी फाइटर। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न हुआ। दीजिए रंजना को अनुमति।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर। बने रहिए हमारे साथ। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। रोजगार समाचार हम लेकर आएंगे 3:00। 3:05 का समय होगा सुगम संगीत कार्यक्रम का। आप सुनेंगे गीत और भजन। कलाकार होंगी अत्सी मित्रा। झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 3:15 से। इस कार्यक्रम के तहत आज आप सुनेंगे कुरमाले लोकगीत। कलाकार होंगे रोहिण चंद्र महतो। 3:30 पर सुनिएगा उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के तहत दादरा और चैती। कलाकार होंगे विदुषी शोभा गोटू। 3:45 पर आप सुनेंगे लोकगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार होंगे दामोदर प्रसाद सिंह।

सामुदायिक गीत पाठ आप सुनेंगे शाम 4:02 से। 4:30 का समय होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। शाम 5:02 पर सुनिएगा कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे अंग्रेजी में। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कल कारखाने। शाम 6:10 पर झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रेम सिंह पूर्ति और साथियों के स्वर में हो लोकगीत।

शाम 6:30 से आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम। क्षमा करें, शाम 6:30 से आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत एजवेस्टन बर्मिंघम में भारत बनाम पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम की 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार।

0: Nurse womanhood and symbolizes the fertility and regenerative cycle of Mother Earth. The festival derives its name from Rajaswala, reflecting the belief that the earth, like women, undergoes a period of rest and rejuvenation. Consequently, agricultural activities have remained suspended during this period. Women and girls are at the heart of the festivities. They are adorned in new attire, relieved from household chores, and seen participating in traditional customs including swings, folk songs, and community celebrations. Homes across Odisha are resonating with the aroma of festive delicacies such as Podo Pitha, Arisa Pitha, Chakuli Pitha and the popular Raja Pan, which are being shared with family, neighbors and friends. Raja is a unique celebration of womanhood and Odisha's enduring reverence for nature and its life-sustaining processes. Prakash Das, Akashvani News, Bhubaneswar.
1: Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they've collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, the ISRO chief explained that Chandrayaan-3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the moon for up to 200 days. The White House has said that U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world leaders during the next week's G7 summit in France. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. The India Meteorological Department, IMD, has forecast favorable conditions for further advancement of southwest monsoon into remaining parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, some more parts of Odisha, and some parts of South Chhattisgarh during the next 2 to 3 days. The IMD predicted heavy rainfall over parts of the northeastern region, Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The weather agency said that thunder squall conditions are likely to prevail over Madhya Pradesh, Telangana and West Rajasthan till tomorrow. It added that Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh, Jharkhand, Maharashtra, Uttarakhand, interior Karnataka and West Bengal will witness thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds today. Moving on to sports news, first the news from FIFA. Australia made a dream start to their FIFA World Cup 2026 campaign, defeating Turkey 2-0 in their Group D opener. Goals from Nestori Ayankunda and Connor Metcalf capped two clinical counter-attacking moves as the Socceroos claimed all 3 points. Australia remained compact and organized throughout the contest, frustrating their opponents and capitalizing on their chances. For Turkey, competing in their first World Cup in 24 years, the much-anticipated return to football's biggest stage ended in disappointment. Earlier in the day, Scotland moved to the top of Group C with a hard-fought 1-0 victory over Haiti in their Group C opener in Massachusetts. With this, Scotland ended a 28-year wait for a World Cup victory. And in ICC Women's T20 World Cup, India will begin their campaign against arch rivals Pakistan in a Group A fixture at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. India time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France special global strategic partnership will be held later today. 7 people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in the next 2 to 3 days. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
3: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
4: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित

0: भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मानसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
1: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जमशेदपुर है।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गीत हमने लिया था फूल और कांटे फिल्म से। शब्दकार थी समीर, संगीतकार नदीम शवन।

अलका याग्निक और कुमार सानू के स्वर में ये गीत आप सुन रहे थे हम हैं राही प्यार के फिल्म का। बोल थी समीर के, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं दलाल फिल्म से, इसे गाया है कुमार सानू ने। गीतकार है प्रकाश मेहरा, संगीत दिया है बप्पी लाहिरी ने।

मैं फिर से जीना चाहती हूँ रजत, तुम्हारी आंखों में, बाहों में, तुम्हारे साथ। मैं इंतजार करूंगी रजत, एतबार करूंगी, हद से भी ज्यादा तुमसे प्यार करूंगी। बस मेरे प्यार की खातिर एक बार वापस आ जाओ रचित, सिर्फ एक बार।

0: قیامت سٹی اندر تھریٹ فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھیں ابھیجیت اور سادھنا سرگم کی آواز میں ندیم شون کے دھن پر, بول تھے سمیر کے. اور اسی گیت کے ساتھ کارکرم فلم سنگیت یہیں پر سمپن ہوا. یہ آکاش وانی جمشید پور ہے.
1: नमस्कार. प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है. वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटनों के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है. साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं. उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी. रांची में 16 जून से शुरू होने वाले झारखंड कृषि व्यापार मेला की तैयारियां जोरों पर है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक वीडियो संदेश में कृषि प्रक्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए मेला आयोजन को सार्थक प्रयास बताया है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय राज्य के दौरे पर है. वे रांची में आज कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं. उन्होंने सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर शहीदों को नमन किया. इस दौरान उन्होंने जवानों के अदम्य साहस की सराहना की. श्री राय ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में अर्ध सैन्य बलों का योगदान अद्वितीय है. मौके पर सीआरपीएफ के कई अधिकारी मौजूद रहे. इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री ने एक पेड़ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. साथ ही रांची के ओरमांझी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को भी संबोधित किया. झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा. झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबले की बिसात बिछ चुकी है. अब सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के वैतरणी पार करने की कवायद में जुटे हैं. एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों ही जीत को लेकर आशान्वित हैं. इधर राज्य में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है. कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा संख्या बल और समीकरण को लेकर सक्रिय है. पार्टी के प्रभारी और चुनाव पर्यवेक्षक भी आज रांची पहुंच रहे हैं. परिमल नाथवानी भी फिलहाल रांची में समीकरण और संख्या बल जुटाने की कवायद में है. प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा. इस सिलसिले में आज रांची स्थित योगदा आश्रम में विशेष सत्र का आयोजन किया गया. इस मौके पर आश्रम के स्वामी ईश्वरानंद गिरी ने लोगों को ध्यान और योग के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से मन को एकाग्र किया जा सकता है.
2: मानव की जो 3 पहलू हैं, मानव का एक शरीर है, मन है, एक आत्मा है, इन तीनों पहलुओं का एक सामंजस्यपूर्ण विकास करने की विधि हम लोग सिखाते हैं. हमारे पास शक्ति संचार व्यायाम है जिनके अभ्यास से शरीर जो है हमेशा स्वस्थ रहता है. इस साल भी हमारे सभी जो ध्यान केंद्र हैं पूरे भारत में 250 से लेकर 300 ध्यान केंद्र ध्यान मंडलियां हैं, तो उन सब में विशेष कार्यक्रम होते हैं इस प्रकार जैसे आज हुआ है.
1: विश्व रक्तदान दिवस पर आज राज्य भर में कई स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें खास और आम सभी ने रक्तदान कर इस पुनित कार्य के लिए प्रेरित किया. हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में भी इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को रक्तदाताओं ने रक्तदान के लिए प्रेरित किया.
3: मैं फर्स्ट टाइम अपना ब्लड डोनेट कर रहा हूँ. ब्लड डोनेट हर एक को करना चाहिए. ब्लड डोनेट करने से आदमी स्वस्थ रहता है और दूसरा का भी भलाई होता है. जिसको खून का नीड होता है वो पूरा होता है. एक तरह से समाज सेवा है और अपना भी शरीर का इसमें शुद्धि होता है. आप आइए, डोनेट कीजिए, बढ़ चढ़ के ये रक्तदान शिविर में हिस्सा लीजिए.
1: तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाली 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 के लिए झारखंड टीम का चयन ट्रायल 22 जून को रांची में होगा. ट्रायल सुबह 9 बजे से मोरहाबादी स्थित मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में होगा, जिसमें 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे। खिलाड़ियों को आधार कार्ड, हॉकी इंडिया आईडी कार्ड और नगर निगम या पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है, वरना चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर। दोपहर के 3 बज चुके हैं। प्रस्तुत है रोजगार समाचार। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL एग्जामिनेशन 2026 के तहत विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए

आवेदन आमंत्रित किया है। कुल रिक्तियां हैं 12,256। शैक्षणिक योग्यता है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कट ऑफ तिथि तक उनकी परीक्षा का परिणाम घोषित हो जाना चाहिए। आयु सीमा हर पद के लिए अलग अलग है। पद के अनुसार न्यूनतम आयु 18 या 20 वर्ष, जबकि अधिकतम आयु 27, 30 और 32 वर्ष है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में सरकारी नियम के अनुसार छूट दी जाएगी। पदों के नाम हैं: असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ऑडिटर। एसएससी सीजीएल 2026 दो चरण में आयोजित की जाएगी, टीयर 1 और टीयर 2। ये परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड यानी सीवीटी मोड में आयोजित की जाएंगी। टीयर 1 परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश विषयों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। टीयर 1 परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार टीयर 2 परीक्षा में शामिल होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप सर्च कर सकते हैं https://ssc.gov.in। झारखंड राज्य में कक्षपाल के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। कुल रिक्तियां हैं 1,733, जिनमें से 1,634 पद पुरुष कक्षपाल के लिए हैं, जबकि महिला कक्षपाल के लिए 64 रिक्तियां हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जून 2026 है। सीमा सड़क संगठन ने जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। कुल रिक्तियां हैं 899, जिनमें से स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 300 पद हैं, ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए 261, ऑपरेटर एक्सेक्टिंग मशीनरी के लिए 207, ड्राफ्टमैन के लिए 42, हिंदी टाइपिस्ट के लिए 10 और इलेक्ट्रीशियन के लिए 79 पद हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप सर्च कर सकते हैं https://bro.gov.in। आकाशवाणी जमशेदपुर से रोजगार समाचार समाप्त हुए।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जमशेदपुर, 3:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत भजन और गीत। कलाकार हैं अतासी मित्रा। सबसे पहले सुनते हैं भजन।

अतासी मित्रा की आवाज में आप सुन रहे थे ये भजन। आइए अब सुनते हैं गीत।

अताशी मित्रा की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। 3:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम के तहत कुरमाले लोग।

0: कलाकार हैं रोहिण चंद्र महतो एवं साथी।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है रोहिण चंद महतो व साथियों की आवाज में कुर्माली लोकगीत। प्रस्तुत गीत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बखान किया गया है। इस गीत के अनुसार जब गोपियां नहाने के लिए नदी में उतरती हैं और पानी से सखियों के साथ खेलती हैं, तो श्री कृष्ण चुपके से आकर उनके वस्त्रों को चुरा कर कदम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं और बांसुरी बजाकर उन्हें किस तरह से तंग करते हैं, आइए इस गीत में सुनते हैं।

श्रोताओं, प्रस्तुत गीत में अपनी मातृभाषा और अपनी जन्म देने वाली माँ की महत्वता को समझाते हुए गीत गाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस दुनिया में जब हमने जन्म लिया तो माँ ने ही बचपन से हमें बोलना सिखाया, साथ ही हम जिस समुदाय के हैं उसके रीति रिवाज की भी शिक्षा दी, यानी कि हमारी संस्कृति सभ्यता से ही माँ ने ही हमें परिचय कराया है। इसलिए कभी भी माँ और अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए। आइए करमचंद्र महतो व साथियों की आवाज में सुनते हैं ये गीत।

0: रोहिन चंद्र महतो और साथियों की आवाज में आप सुन रहे हैं कुरमाली लोकगीत।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत गीत में एक प्रेमिका की तड़प को दिखाया गया है कि कैसे वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए व्याकुल है। गीत के अनुसार बारिश आने को है और प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलकर रासलीला करने की सोच रही है। वो उसके इंतजार में इतना व्याकुल है कि उससे ये तड़प सही नहीं जा रही और उसके आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। तो आइए सुनते हैं करमचंद महतो।

झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे कुरमाली लोकगीत, कलाकार थे रोहिन चंद्र महतो। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर। आइए सुनते हैं उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे दादरा और चैती, कलाकार होंगे विदुषी शोभा गुट्टू। सबसे पहले सुनते हैं दादरा।

उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थी दादरा विदुषी शोभा गुट्टू की आवाज में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम के तहत चैती। कलाकार हैं विदुषी शोभा गुट्टू।

उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे चैती, कलाकार थी विदुषी शोभा गोटू। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है। आइए अब सुनते हैं लोकगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत लीजिए सुनिए भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं दामोदर प्रसाद सिंह और साथी।

चनिया बबुआ बोला ना सुधरा मलिनिया पूछे मधुरी बचनिया बबुआ बोला ना काहे खातिर।

लोकगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत, कलाकार थे दामोदर प्रसाद सिंह। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी रांची से।

के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में वे कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। श्री राय ने राजधानी के निकट और मांझी स्थित एक विश्वविद्यालय में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में झारखंड समेत देश भर में अभूतपूर्व काम हुए हैं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी पड़ गई है। इन 2 सीटों के लिए झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तीनों प्रत्याशी जीत के आंकड़ों को जुटाने में जुटे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर 18 जून को मतदान होगा। पाकुड़ जिले के सोनजड़ी स्थित बंद पत्थर खदान में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने मृतक के शव को खदान से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जामताड़ा जिले के नाला वन क्षेत्र के भेलान डंगाल मोड़ के पास गश्ती के दौरान वन विभाग की टीम ने एक मालवाहक वाहन से अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे 18 वोटा लकड़ी जब्त किया है। प्रधान वनरक्षी ने बताया कि वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर फरार वाहन चालक और लकड़ी तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। विश्व रक्तदाता दिवस पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिमडेगा में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को रक्तदान के प्रति प्रेरित किया गया। रैली में शामिल ENM स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य प्रतिभागियों ने लोगों को बताया कि रक्तदान महादान है, जिससे जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सकती है। इस मौके पर उन्होंने स्वस्थ लोगों से नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि गढ़वा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पलामू और सिमडेगा जिले के कई इलाकों में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात होने की भी आशंका है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मुख्य समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं सामुदायिक गीत पाठ के तहत कन्नड़ लेसन।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएं।
1: हाँ?
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ तैयार हैं।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्की गलू। क्या है?
1: कडल हक्की गलू।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप हाँ। सब लिख लीजिए। हाडू तिहवो हारू तिहवो
1: हाडू तिहवो हारू तिहवो
0: कडल करेय खग कुला
1: कडल करेय खग कुला
0: यनी
1: तो मुगीला उद्द अगला जी की दनी तू
0: बांदला
1: बांदला।
0: अच्छा तो एक पहला स्टंज है।
1: हाँ?
0: आगे का स्टंज है बान लोक नगुव नाका
1: बान लोक नगुव नाका
0: हारो हक्की पालीगे
1: हारो हक्की पालीगे
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा तो अगला स्टेंज है दूर दूर हारी हारी
1: दूर दूर हारी हारी
0: व्योम कानुआ बगे
1: व्योम कानुआ बगे हसीव मरेसी
0: वांछे मेरेसी
1: वांछे मेरेसी
0: दिगंत सेरो लघु बगे
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टैंज़ा
1: हाँ।
0: वो भी सुना दो।
1: हाँ।
0: लिख लेते हैं।
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो
1: याव नाडो यंथ काडो
0: हारो आसे हक्कीगे
1: हारो आसे हक्कीगे
0: मुक्त गगन नूरु काला
1: मुक्त गगन नूरु काला
0: ईजो शक्ति रेक्केगे
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ, हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम होना है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी।
1: हाँ? हाँ।
0: जी को हम रिक्वेस्ट कर देंगे।
1: हाँ? हाँ।
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं, पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे?

कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजे के दिखाते हैं ना। अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं।

अब ये आखिर का अंतर जो है ना, वो पहली अंतर था ना, बान लोक नगुनाक, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद होगी, है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक गीत पाठ के तहत कन्नड़ लेसन। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। इसके पहले आपने सुना सामुदायिक गीत पाठ का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से सुन रहे हैं FM 102.4 MHz पर। शाम के 4:30 हुए हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा, लेकिन पहले

0: डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर से सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

प्रीतम की बनाई धुन पर इरशाद कामिल का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे गाया था जावेद अली, अनुपम अमोद और साथियों ने। फिल्म थी आक्रोश।

बागी 3 ये नाम था फिल्म का जिसका गीत आप सुन रहे थे शान और साथियों का गाया हुआ। गुरप्रीत सैनी और गौतम जी शर्मा ने इसके गीत रचना की थी, संगीत तैयार किया था रोचक कोहली ने।

0: एस जानकी और बपी लहड़ी के गए साहिब फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जमशेदपुर FM 102.4 MHz पर शाम के 5 बजने को है। सुनिएगा प्रादेशिक समाचार मुख्यांश हमारे रांची केंद्र से।
1: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में वे कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। श्री राय ने राजधानी के निकट उरमांज स्थित एक विश्वविद्यालय में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में झारखंड समेत देश भर में अभूतपूर्व काम हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने आज बोकारो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। श्री मुंडा ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों और साधन विहीन लोगों के उत्थान के लिए लगातार काम हो रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि मतदाताओं की मैपिंग एवं इन्यूमरेशन फेज के दौरान मतदाताओं से कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2003 के मतदाता सूची से जिन्होंने मैपिंग करा लिया है लेकिन उसमें कुछ त्रुटि है तो उन्हें इन्यूमरेशन के दौरान कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कुमार ने बताया है कि 2026 की मतदाता सूची में शामिल चिन्हित उन्हीं मतदाताओं से दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे जिन्हें सत्यापन अवधि के दौरान नोटिस मिलेगा। विश्व रक्तदाता दिवस पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जामताड़ा जिले में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। मौके पर 8 जून को आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान करने की प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने लोगों से रक्तदान करने की अपील की ताकि विषम परिस्थिति में किसी की जान बचाया जा सके। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि गढ़वा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा

पलामू और सिमडेगा जिले के कई इलाकों में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात होने की भी आशंका है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचार मुख्यांश का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से हो रहा था। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यूथ टाइम्स प्रोग्राम सुनिएगा, लेकिन पहले कुछ महत्वपूर्ण संदेश।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: यूथ टाइम्स, ये था युवा साथियों के लिए हमारा कार्यक्रम। कार्यक्रम आपने सुना आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: यह आकाशवाणी जमशेदपुर FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: हमारे केंद्र से अब सुनिए श्रमिक साथियों के लिए हमारा कार्यक्रम कल कारखाने।

इस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को संजय प्रसाद का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज विश्व रक्तदाता दिवस पर हम स्थानीय मिलानी हॉल बिष्टुपुर में आयोजित मेगा ब्लड डोनेशन कैंप पर आधारित एक रेडियो रिपोर्ट सुनवाएंगे इस कार्यक्रम में। साथ ही अटल पेंशन योजना के विषय में भी जानकारी देंगे और समय रहा तो फिल्मी गीतों के माध्यम से आपके मनोरंजन का भी ख्याल रखेंगे। पर सबसे पहले आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आप सभी की हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम आज एक ऐसे मानवीय कार्य की चर्चा करेंगे जो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। ये कार्य है रक्तदान। कहा जाता है कि रक्तदान का कोई विकल्प नहीं होता। विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में भले ही बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हों, लेकिन आज भी मानव रक्त का कृत्रिम निर्माण संभव नहीं हो पाया है। ऐसे में दुर्घटना, गंभीर बीमारी, ऑपरेशन, प्रसव या थैलेसीमिया जैसे रोगों से पीड़ित मरीजों के लिए रक्तदान ही जीवन का आधार बनता है। हर दिन अस्पतालों में हजारों मरीजों को रक्त की आवश्यकता होती है। कई बार समय पर रक्त ना मिलने के कारण मरीजों की जान खतरे में पड़ जाती है। यदि स्वस्थ लोग नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान करेंगे तो इस समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। रक्तदान केवल एक चिकित्सीय प्रक्रिया नहीं बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। एक यूनिट रक्तदान से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि रक्त को विभिन्न घटकों जैसे लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स में विभाजित कर अलग अलग मरीजों को दिया जा सकता है। अक्सर लोगों के मन में रक्तदान को लेकर कई भ्रांतियां होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है या स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जबकि चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है। शरीर कुछ ही दिनों में रक्त की कमी को पूरा कर लेता है। रक्तदान से पहले दाता के स्वास्थ्य की जांच भी की जाती है, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती है। रक्तदान सामान्यतः 18 से 65 वर्ष की उम्र में की जाती है और उनका वजन, जो रक्तदान करने वाले हैं उनका 45 से 50 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। पुरुष हर 3 महीने में और महिला चिकित्सा डॉक्टर्स के सलाह के अनुसार नियमित अंतराल पर रक्तदान कर सकती है। विश्व रक्तदाता दिवस हमें उन लाखों स्वैच्छिक रक्तदाताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर देता है जो निस्वार्थ भाव से रक्तदान कर अनगिनत लोगों को जीवनदान देते हैं। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि रक्तदान केवल आपातकालीन स्थिति का विषय नहीं है बल्कि इसे एक सामाजिक जिम्मेदारी और नियमित आदत के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। आज जरूरत इस बात की है कि युवा वर्ग, सामाजिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान आगे आकर रक्तदान शिविरों का आयोजन करें तथा लोगों को जागरूक बनाएं। यदि प्रत्येक स्वस्थ नागरिक वर्ष में कम से कम 1-2 बार रक्तदान करने का संकल्प ले तो देश में रक्त की कमी की समस्या काफी हद तक समाप्त हो सकती है। आइए इस विश्व रक्तदाता दिवस पर हम सब ये संकल्प लें कि जब भी अवसर मिले हम स्वेच्छा से रक्तदान करेंगे और दूसरों के जीवन में आशा की नई किरण बनेंगे, क्योंकि किसी की जरूरतमंद को दिया गया आपका थोड़ा सा रक्त उसके लिए पूरी जिंदगी का उपहार बन सकता है। रक्तदान महादान है और जीवन बचाने का अभियान है। श्रोता मित्रों, इन बातों के बाद अब आइए हम आप लोगों को सुनवाते हैं एक रेडियो रिपोर्ट।

0: विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर मिलानी हॉल बिष्टुपुर में आयोजित मेगा रक्तदान शिविर पर आधारित है ये रेडियो रिपोर्ट। सामग्री संकलन एवं वाचन स्वर हैं संजय प्रसाद के, प्रस्तुत करता है राजेश कुमार राय। श्रोताओं, आज बिष्टुपुर में स्थित मिलानी हॉल में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। आयोजक थे प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर, द मिलानी, प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन, टाटा स्टील फाउंडेशन और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इस अवसर पर प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के विकास श्रीवास्तव ने मेगा ब्लड डोनेशन कैंप के महत्व के बारे में बताते हुए कहा।
1: नमस्कार, आज दी मिलानी बिष्टुपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह मौका बहुत खास है, आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस मौके पर प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन, प्रेस क्लब जमशेदपुर, दी मिलानी, झारखंड ग्रामीण बैंक और टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह रक्तदान शिविर आज आयोजित करने का खास मकसद यह है कि अभी जून का महीना है, इस मई अप्रैल से लेकर जून तक जब गर्मी प्रचंड रहती है तो हमेशा देखा गया है कि रक्तदान शिविर जो है शहर में कम होने लगते हैं। इस कारण से क्या होता है, जो रक्त कोष है, जो हमारा ब्लड सेंटर है, वहाँ पर ब्लड की उपलब्धता कम होने लगती है, लेकिन डिमांड वही स्थिति में रहता है। तो ऐसे में ब्लड सेंटर से यह हम लोग के पास संदेश आया कि आप एक कैंप आयोजित करें कि रक्त कोष में रक्त की कमी हो रही है। इसके बाद हम लोगों ने तय किया प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के साथ मिलकर कि हम लोग एक कैंप विश्व रक्तदाता दिवस पर आयोजित करेंगे ताकि रक्त कोष जो हमारा यहाँ है वो बना रहे, किसी भी मरीज को, किसी भी व्यक्ति को, जरूरतमंद को कोई तकलीफ खून को लेकर नहीं हो। यह उद्देश्य यही है कि हमारा रक्त कोष, हमारा रक्त जो बैंक है, उसका कोष कभी कम ना हो।
2: बिल्कुल, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। जो पुनित कार्य आप लोग कर रहे हैं इसे निरंतर करते रहें और जमशेदपुर वासियों को इसका फायदा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: इसके बाद हमने प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के निदेशक अरिजीत सरकार से बातें की, जो कोऑर्डिनेटर भी हैं जमशेदपुर ब्लड बैंक सेंटर के। इन्होंने रक्तदान के फायदे के विषय पर हमसे बातें की और ये बताया कि जमशेदपुर में शतकवीरों की कमी नहीं है जो ब्लड डोनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।
3: आज विश्व रक्तदाता दिवस है। जमशेदपुर शहर पूरे भारत वर्ष में एक रक्तदाताओं का शहर के रूप में जाना जाता है, तो इसका जीता जागता उदाहरण आज देखने को मिलता है। जिस तरह से सुबह से ही कई शतकवीर रक्तदाताओं ने आज रक्तदान के जरिए इस दिन को यादगार बना रहे हैं, तो कई ऐसे योद्धा भी आज दिखे जो अपना पहला स्वैच्छिक रक्तदान कर गए। तो सही में ये शहर जिस तरह से एक तरफ लोहा का निर्माण कर रहा है, पूरे विश्व में लोहा निर्माण में प्रसिद्ध है, तो ये शहर रक्तवीरों के चलते भी आज अपना एक मिसाल कायम किया है। जिस तपती गर्मी में जहां चारों तरफ रक्तदान शिविर में कमी आया, रक्त की भारी किल्लत को देखा जा रहा था, तो ये शहर के रक्तवीर ऐसा है कि इस किल्लत में अब इस बीड़ा को अपने कंधे पर ले लिया और आज कई जगह इस रक्तदान के जरिए जमशेदपुर ब्लड सेंटर के कुआं को फिर से हरा भरा कर दिया।
2: अरिजीत जी, पहले कहा जाता था कि एक आदमी रक्तदान कर एक व्यक्ति का जान बचाता है, बट आज के दिन में एक आदमी एक रक्तदान कर चार लोगों का जान बचाता है।
3: निश्चित तौर पर पहले जिस तरह से एक पेड़ कई जिंदगी है, उसी तरह से आज का जो स्वरूप है रक्तदान का कि कोई एक रक्तदान करता है तो हम सीधे तौर पर तीन जिंदगियां बचाने में कामयाब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बिना डिग्री का ये सभी रक्तवीर कहीं ना कहीं एक चिकित्सक डॉक्टर का रूप मतलब लेता हुआ आज प्रतीत होता है कि एक रक्तदान से तीन जिंदगी को बचा पाता है।
2: बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है कि लोग इतने बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं और रक्तदाता दिवस जो है उसका नाम सार्थक करे, जो मनाने का उद्देश्य है वो जमशेदपुर में आज अच्छा दिख रहा है।
3: नहीं, ये तो सही में ये तो बहुत ही गर्व करने वाला बात है, क्योंकि उत्सव के लिए तो निमंत्रण नहीं भेजा जाता, ये तो उत्सव है। आज कई के लिए दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, ईद, मुहर्रम सब आज है, तो लोग दूर दराज से, शहर से लेकर गाँव तक लोग एक जगह इकट्ठा होकर आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं।
2: बिल्कुल, इस दिन को आप लोगों ने मिलकर बहुत यादगार बनाया और आपकी पूरी टीम के लिए, पूरे आयोजक मंडली के लिए इसका धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपको भी सर।
0: इसके बाद हमने स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले कुछ रक्तदाताओं से भी इस अवसर पर बातें की और उनके अनुभव को जाना, तो आइए सुनते हैं उनके अनुभव।
2: सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें।
4: मेरा नाम सतपाल सिंह है।
2: कहाँ के रहने वाले?
4: जुगसलाई जमशेदपुर से।
2: सतपाल जी, आपने 100 से अधिक बार
4: जी
2: रक्तदान किया है, तो अपने अनुभव के बारे में बताएं।
4: ये सर सबसे पहले शुरुआत मेरी अपनी माँ के लिए हुआ था, तो उनको 2 बोतल जरूरत था। उसके बाद जब हम लोग सारा जमाने में 1990 की बात है, तो 2 बोतल अरेंज करके हम लोग फिर दिए, तो 2 के बाद फिर ऐसे करते करते 10 बोतल उनको लग गया। तो 10 बोतल का अरेंजमेंट जब हम लोग किए, तो हम लोग को ब्लड का महत्व समझ में आया कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये अपने लिए ही नहीं है, समाज के लिए भी ज़रूरी है। तो उस टाइम से हम लोग कंटिन्यू 1990 से ये कंटिन्यू कर रहे हैं लगातार।
2: तो आज के डेट में कितने बार हो चुका है?
4: मेरा ये 125वां बार हो चुका है महीने।
2: बहुत अच्छा, आपको 125 बार कर चुके, आपको

0: बहुत बहुत बधाई,
1: शुभकामनाएं। शुक्रिया।
0: तो वैसे लोगों को क्या कहेंगे जो अभी भी झिझक रहे हैं रक्तदान करने?
1: बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, एकदम समाज के सामने आना चाहिए और अपने अपने खुशी से करना चाहिए। इसमें कुछ भी ऐसा बाधा नहीं है, ना शारीरिक तौर पर ना मानसिक तौर पर, खुल के सामने आए। बल्कि नौजवान लोग को ज़्यादा जरूरी है कि वो सामने आए, ताकि उनके साथ साथ में समाज को ये बहुत अच्छा एक मार्ग दिखाई दे सके।
0: बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: आपका नाम?
2: निशा कुमारी।
0: कहाँ रहते हैं?
2: हम आदितपुर।
0: यहाँ रक्तदान करने आई हैं? इससे पहले भी आपने रक्तदान किया है?
2: हाँ,
0: कि पहली बार है?
2: नहीं, मैं बहुत बार कर चुकी हूँ रक्तदान।
0: तो कैसा लगता है रक्तदान करके?
2: बहुत अच्छा लगता है, मन बहुत अच्छा, खुशी लगता है रक्तदान करने में कि किसी का मेरा ब्लड किसी को काम आएगा। और हमेशा रक्तदान करते रहना चाहिए। कि
0: तो मन घबराने वाली कोई
2: नहीं? नहीं, कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: तो बाकी लोगों को क्या कहेंगे जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं?
2: बाकी लोगों को कहेंगे कि आप लोग भी रक्तदान करिए।
0: सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें।
3: मेरा नाम कुमारी शाजरा है।
0: आप रक्तदान केंद्र में आए हैं रक्तदान करने के लिए, तो आप अपना अनुभव बताएं कि कब से रक्तदान कर रहे हैं और अब तक कितनी बार कर चुके हैं, और रक्तदान कर आपको कैसा लगता है?
3: सबसे पहले तो रक्तदान मैं 18 साल की उम्र से शुरू किया हूँ। 18 साल का था तब से पहला बार मैं अपने फादर के साथ, मिल्टन हाजरा जी के साथ में डोनेशन करना स्टार्ट किया। उसके बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन है अतिक संघर्ष फाउंडेशन। मैं तो जनरली महीने में दो बार करता हूँ SDP डोनेशन करता हूँ। और जमशेदपुर का सबसे युवा शतकबीर का जो खिताब है वो ब्लड सेंटर और सारे लोगों ने मिलकर दिया है।
0: कि आप शतकबीर हैं और ये बहुत गौरव की बात है।
3: धन्यवाद आपको। और ये मेरा जो डोनेशन है, ये अभी मैं 139वां डोनेशन पे, 139th डोनेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है।
0: तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी भ्रांति के वजह से या डर के वजह से रक्तदान करने में झिझकते हैं, तो वैसे लोगों को, वैसे श्रोताओं को क्या कहेंगे आप?
3: देखिए, मैं हर किसी से एक ही रिक्वेस्ट बोलिए, निवेदन बोलिए, हाथ जोड़ के मैं उनसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ब्लड डोनेट करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरा है कि इसके लिए आपको कोई स्पेशल फूड की ज़रूरत नहीं होती, और ये रिकवरी सिर्फ और सिर्फ पानी पीने से विद इन 24 आवर्स आपका ये पूरी तरीके से लिक्विड आपका बॉडी पे रिटेन हो जाता है।
0: अच्छा, तो मतलब जो आप रक्तदान करते हैं वो पूरा 24 घंटे
3: के अंदर, वो जो बोला जाता है ना रेड रंग जो होता है हमारा ब्लड में, वो एज इट इज आ जाता है। उसमें जो कंटेंट होता है वो आने में थोड़ा समय लगता है, बट आपका बॉडी का जो लिक्विड है वो एज इट इज भरपाई हो जाता है। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर साइंटिफिकली देखें तो हमारा सेल जो होता है ब्लड सेल, वो बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय होता है, तो वो ऑलमोस्ट 95-120 डेज के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि हम 90 दिन पे ब्लड डोनेशन कर दें।
0: बिल्कुल।
3: और दूसरे इसके साथ में अगर समझने की कोशिश करें तो इससे मेजर जो है आज के समय में आप देखते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, ये सारे रिलेटेड डिजीज आपके जिंदगी में कम से कम होने के चांसेस है।
0: रक्तदान करने के ये बहुत बड़ा फायदा है।
3: हम लोगों ने ये बहुत सालों से, आप करीब ये हमारा इतने सालों से हम लोग कर रहे हैं, और इसके अनुभव से हम लोगों ने देखा है कि जो भी हमारे साथ जो रक्तदाता हैं, जो कंटिन्यूअस जो दे रहे हैं, उनको ये बहुत बड़ा एक बोलिए वरदान बोलिए या भगवान का विशेष बोलिए कि उनको इस टाइप के रिलेटेड चीज़ें अभी तक नहीं आए हैं।
0: चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
0: अपना परिचय दें और आज आप रक्तदान शिविर में आए हैं तो अपना अनुभव भी बताएं।
4: जी संजय जी, मेरा नाम प्रभाष झा हुआ और मैं पेशे से शिक्षक हूं, और साथ ही साथ एक RJ के तौर पे भी अपनी भागीदारी शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में देता हूं। जहां तक रक्तदान का सवाल है, 2005 से ही मेरा इससे जुड़ाव हुआ। यूँ कहिए कि मजाक में मैंने ये सिलसिला शुरू किया और वो अब तक अनवरत चल रहा है। मैं स्टूडेंट डिबेट सोसाइटी की तरफ से एक रक्तदान शिविर का ऐसे ही आयोजन किया था। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कभी इसके पहले मैंने रक्तदान नहीं किया था। वहाँ पहुँचा तो दोस्तों ने कहा कि क्या तुम ब्लड डोनेट करोगे, तो मैंने कहा चलो भाई कर देता हूँ। तो उन लोगों को भी घोर आश्चर्य हुआ, समय कह रहे ये बंदा आया किसी और काम से और ब्लड डोनेशन के लिए कहा तो ये तैयार हो गया तुरंत, इसने सोचा भी नहीं पल भर के लिए। तो चूँकि मुझे इसके बारे में पहले से जानकारी थी कि

0: आपके शरीर में नए खून का निर्माण होता है, इसने भी मुझे प्रेरित किया। और 2005 से जब मैंने वो यूं ही शुरू कर दिया था सिलसिला रक्तदान का, मुझे रक्त देकर उस समय ही बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे कोई नई ऊर्जा मेरे शरीर में आ गई है, और उस समय से मैंने ये शुरू किया तो आज तक ये जारी।
1: मेरा नाम सुविंदर मुखर्जी, मानगो डिमनर रोड में रहते हैं, और टीम पथिक संघ फाउंडेशन में मैं मानव सेवा का काम करते हैं।
2: आप शतक वीर हैं, अब तक कितना दे चुके हैं हमारे श्रोताओं को भी बताइए।
1: अब तक हम 103 बार ब्लड दे चुके हैं, जिसमें 33 टाइम्स नॉर्मल ब्लड है, बाकी SDP है, सिंगल प्लेटलेट डोनर।
2: अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा गंभीर हैं रक्तदान को लेकर। एक बार आपके घर में आपकी मम्मी का मृत्यु होने के बाद भी आप उसी ड्रेस में किसी रक्तदान की जरूरत को महसूस करते हुए रक्तदान करने आए थे, तो ये कैसे हुआ था, इसके बारे में कुछ बताएं।
1: एक्चुअली क्या है कि मेरा माँ का देहांत होने का 3 से 4 दिन बाद मेरे को जमशेदपुर ब्लड बैंक से फ़ोन आया कि सुबंधुदा आपको आना है तो SDP देना है एक पेशेंट को। तो हम उनको बोले कि सर इस तरीके से अभी कैसे हम जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो बोलता है कि बदन में कपड़ा भी रहता नहीं है। हमने सर इस स्थिति में तो हम आ नहीं पाएंगे। तो वहाँ से फोन करके बोले कि तुम अपना माँ को खोया है और किसी का माँ को बचाना तुम्हारा धर्म नहीं है क्या? तो हम बोले नहीं, जरूर धर्म है। तो बोले तुम आराम से गाड़ी चलाते हुए आओ, देखते हैं क्या होता है। और फिर हम आए और ब्लड दिए।
2: चलो, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम मौसमी सरकार है, मैं परसुडी की रहने वाली हूँ। और
2: आज जो ये रक्तदान शिविर में आप रक्तदान कर रही हैं, तो आपके अनुभव को बताइए।
3: मैं ये 19वां बार दे रही हूँ। मैं सबसे पहले, मेरा जब 18 साल का उम्र था, मैं अपना ग्रेजुएट कॉलेज में मैं पढ़ती थी, उस समय मैं पहली बार दी थी। और उस समय से मैं प्रेरित हुई हूँ कि किस तरह ब्लड डोनेशन करना, मतलब कैसे ब्लड डोनेशन किया जाता है, किस तरह ब्लड मतलब देने से कितना अच्छा होता है। और ब्लड जो है आपका, ये एक दिन के अंदर जितना भी हम लोग ब्लड देते हैं उससे ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, तो ब्लड डोनेशन कीजिए। ये मतलब मैं यही सबको बताना चाहूँगी, जो भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं या फिर जो भी पब्लिक को, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ब्लड डोनेशन कीजिए, क्योंकि ब्लड डोनेशन जितना करेंगे वो आपके लिए और अच्छा होगा, और ये ब्लड डोनेशन करके हम दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं।
2: आपके अनुभव के आधार पर बताइए कि इसको ब्लड डोनेट करने पर क्या कोई परेशानी आती है?
3: नहीं, मुझे तो आज तक कोई परेशानी नहीं हुई।
2: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी अपसता मिलानी हॉल बिष्टुपुर में आयोजित मेगा रक्तदान शिविर पर आधारित रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। सामग्री संकलन एवं वाचन स्वर संजय प्रसाद के थे। प्रस्तुतकर्ता थे राजेश कुमार राय।

इस रेडियो रिपोर्ट के बाद अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म काला पत्थर का यह गीत। गीत लिखा है साहिर ने और धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

और अब हम चर्चा करेंगे भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना जिसे हम अटल पेंशन योजना के बारे में जानते हैं। ये योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और वृद्धावस्था में नियमित आय की चिंता से मुक्त रहना चाहते हैं। साथियों, जीवन के सक्रिय वर्षों में हम अपनी आजीविका, परिवार और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन अक्सर बुढ़ापे के लिए आर्थिक सुरक्षा की योजना नहीं बना पाते। ऐसे में अटल पेंशन योजना एक भरोसेमंद सहारा बनकर सामने आती है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य देश के नागरिकों को वृद्धावस्था में एक निश्चित मासिक पेंशन उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास बैंक या डाकघर में बचत खाता हो वो जुड़ सकता है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सदस्य अपनी आयु और चुनी गई पेंशन राशि के अनुसार नियमित अंशदान जमा करते हैं। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उसे हर महीने निश्चित पेंशन प्राप्त होती है। वर्तमान में 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये और 5,000 रुपये के पेंशन के विकल्प उपलब्ध हैं। श्रोताओं, जितनी कम उम्र में कोई इस योजना से जुड़ता है उसे उतना ही कम मासिक अंशदान देना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में योजना से जुड़ता है तो उसे बहुत कम राशि का मासिक योगदान करना होता है, जबकि अधिक आयु में जुड़ने पर योगदान राशि बढ़ जाती है। अटल पेंशन योजना केवल पेंशन ही नहीं देती बल्कि परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखती है। यदि योजना से जुड़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जीवन साथी को पेंशन मिलती रहती है। दोनों के निधन होने के बाद नामित व्यक्ति को संचित राशि प्रदान की जाती है। इस प्रकार ये योजना सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार बनती है। आज देश में करोड़ों लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। विशेष रूप से छोटे दुकानदार, मजदूर, किसान, घरेलू कामगार, ड्राइवर, स्वरोजगार से जुड़े लोग और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी भी इसके माध्यम से अपने भविष्य को सुरक्षित बना रहे हैं। सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही ये योजना आत्मनिर्भर और सम्मानजनक वृद्धावस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना में शामिल होने के लिए अपने निकटतम बैंक, डाकघर या जन सेवा केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। कई बैंक ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान करते हैं। और अंत में यही कहा जा सकता है कि बुढ़ापा जीवन का एक स्वाभाविक पड़ाव है और इसकी तैयारी समय रहते कर लेने में ही बुद्धिमानी है। अटल पेंशन योजना न केवल आर्थिक सुरक्षा देती है बल्कि भविष्य की चिंता को भी कम करती है। इसलिए आप पात्र हैं तो इस योजना के बारे में जानकारी और अधिक प्राप्त करें और अपने तथा परिवार के सुरक्षित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएं। श्रोता मित्रों, अब हमारा आज का कल कारखाने कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगली मुलाकात तक के लिए संजय प्रसाद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम

0: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे दियोक को हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा। वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron are holding delegation-level talks at the historic Villa Carolus at Nice in France. The discussion between the two sides focuses on expanding the special global strategic partnership between two countries, covering defense, technology and trade. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolus. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palais des Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event, being held under the India-France Year of Innovation, brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
2: Aaj Bharat mein ek startup revolution ho raha hai. Is revolution mein Bharat ka naujawan ek naye mindset ke saath manavta ke hit mein samasyaon ke samadhan dhoond raha hai. और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating but who will innovate with India.
3: A country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation.
1: External Affairs Minister Dr. Jaishankar, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, National Security Advisor Ajit Doval, Principal Scientific Advisor Ajay Kumar Sood, Infosys Founder Narayana Murthy and several prominent business leaders were also present on the occasion. Following the inauguration, Prime Minister Modi and French President Macron visited the exhibition and interacted with startup founders, researchers and investors participating in the event. INS Sharada has successfully concluded its visit to Colombo, Sri Lanka. The Ministry of Defense said the visit further strengthened maritime cooperation and friendship between India and Sri Lanka. The visit featured a series of professional training and sporting engagements with the Sri Lankan Navy. The ministry further said that the visit underscored the enduring maritime partnership between India and Sri Lanka and reaffirmed their shared commitment to regional maritime cooperation and security in line with the vision of Mahasagar. The Indian Embassy in Oman said that an Indian-flagged mechanized sailing vessel, Virat 1, carrying 14 Indians, experienced an engine failure off the coast of Oman. In a social media post, the embassy informed that in a closely coordinated and ongoing rescue operation at sea, 11 of the 14 crew members of the vessel have been rescued and taken on board by MV Jabal Ali 9. The embassy added that the rescue operation of the remaining members will be completed shortly. Sources said that the vessel sank because of mechanical failure. The government has debunked a WhatsApp message circulating online that falsely claims applications are being accepted for free laptops under the National Student Laptop Scheme 2026. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, has clarified that this claim is fake and the government has not announced any such scheme. In cricket, India will begin their ICC Women's T20 World Cup campaign against arch-rivals Pakistan in a Group A match at Edgbaston in Birmingham this evening. The match is scheduled to start at 7 p.m. Indian time. Women in blue have dominated this rivalry in Women's T20 Internationals, winning 13 of the 16 matches against Pakistan. In the upcoming week, domestic markets are expected to take directions from a series of high-impact global events and key domestic economic data releases. Investors will closely track the U.S. Federal Reserve's policy meeting outcomes, the Bank of Japan's interest rate decision, developments around the potential U.S.-Iran peace agreement, and movements in crude oil prices. Market participants will also watch India's wholesale inflation data for May, along with other key macro indicators, including employment figures, import-export data, and the country's foreign exchange reserves. And with that, we end this news bulletin.
4: हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हो रहा था। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, अब से थोड़ी देर बाद शाम 6:30 पर हम आपको अपने दिल्ली केंद्र लिए चलेंगे, जहां से आप ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत एजबेस्टन बर्मिंघम में भारत और पाकिस्तान टीमों के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का आपको देखा हाल सुनिएगा। समय याद रखिए, शाम 6:30। इस समय शाम के 6:10 हो चुके हैं। हमारे केंद्र से अब सुनिए कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। इसमें आज आनंद लीजिए हो लोकगीत का। गायक कलाकार हैं प्रेम सिंह पुरती और साथी

यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए अब हम आपको अपने दिल्ली केंद्र लिए चलें, जहां से आप आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के अंतर्गत एजबेस्टन बर्मिंघम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनेंगे। आइए दिल्ली चलें।

0: good to know.
1: Okay, let's talk about the bowling as well. How's the knee to start with?
0: It's good. Yeah.
1: Okay, how do you bowl on a wicket like this that's offering some runs?
0: Yeah, obviously it looks like a batting track, so but still we have a good bowling unit. We have a good spin bowling attack, so I think it will be a good contact.
1: Okay, any key in or outs for you for the team?
0: Yeah, we are going with Saira. She will be playing first time in the World Cup, so that will be her.
1: Oh, the Kalesha Valley will be happy with that. All the best today.
0: Thank you.
1: India have won the toss today and they're going to have a bat first.
2: So a very happy Indian captain over there, Smriti, all smiles, telling us that we have won the toss and India has chosen to bat first. A good toss to win today over here, Vaishali.
3: मुझे ये लगता है कि टॉस जीत के हमने बैटिंग का सही फैसला लिया है, क्योंकि इस पिच पे एक तो बैटिंग पिच है जो कि हमारी फातिमा पाकिस्तान की कैप्टन ने बोला है, लेकिन इसमें एक खासियत और है. जैसे जैसे यहाँ पे टाइम ढलता जाएगा वैसे वैसे स्विंग और स्पिनर्स पे काफ़ी बेनिफिट भी मिलता जाएगा. सो ये एक बैटिंग जो हमारी कैप्टन ने ली है ये एक बहुत सोची समझी चाल है और बहुत ही अच्छा डिसीजन भी लिया इन्होंने.
2: Also a slip of tongue over there by me over there, not Smriti Mandhana but of course Harmanpreet Kaur. But just to carry that conversation forward very quickly, jo aapne yahan baat rakhi abhi Vaishali ki jaise jaise ye wicket aur purana ho gaye pitch hogi, so it's a good wicket abhi bat karne ke liye, lekin baad mein bowler friendly ho jayega. I'll come to you Mona on that. We saw both the captains jumping over there at the choice of having chosen to bat first today, and given the fact that also we have Bharti coming back into the playing 11 for us today, do you think that's an added advantage in terms of batting for India?
4: Definitely yes, क्योंकि आप देखिए कि वर्ल्ड कप की भी हम बात करें, अगर 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप था, बैटर्स का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है और यहाँ पर सबको उम्मीदें होंगी कि स्मृति मांधना हो या शेफाली हो, अच्छी स्टार्ट अगर भारत को यहाँ से मिलती है और मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारती फुलमालिक को आज रखा गया है टीम में. हरमनप्रीत कौर ने अच्छे दो हाफ सेंचुरीज लगाए हैं जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे उसमें, उनका फॉर्म बहुत क्रूशियल है भारत के लिए, और ऋचा घोष हैं. तो हम कुल मिलाकर ये जो आइडिया होगा कि एक बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो पूरी तरह से नहीं तो 80% फातिमा सना पर निर्भर करती है. फातिमा का विकेट अगर जल्दी निकल गया तो वो क्रम्बल कैसे करते हैं वो हमने देखा है. तो यहाँ बहुत ही सही डिसीजन है, जैसे वैशाली जी ने कहा कि पहले बल्लेबाजी की भारती को टीम में रखा, बैटिंग ऑलरेडी स्ट्रांग है इंडिया की, एक बड़ा स्कोर अगर यहाँ खड़ा करती है टीम इंडिया तो ये पहला मुकाबला है जिसको टोन सेट करने वाला मैच कहते हैं. और कागजों पर भी भारत का पलड़ा बहुत भारी है और ये ग्रुप हमने देखा है कि कितना कठिन है. इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें साउथ अफ्रीका भी है, तो किसी भी कोताही की यहाँ गुंजाइश नहीं है. तो यहाँ आइडिया यही होगा कि एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए.
5: जी हाँ, बिल्कुल. भारत और पाकिस्तान के बीच 16 T20 मुकाबले हुए हैं, इनमें भारत ने 13 और पाकिस्तान ने 3 मैच जीते हैं. T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो दोनों टीमें 8 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें भारत ने 6 बार और पाकिस्तान ने 2 बार मातजीत मारी है. कर्नल, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब से वहाब रियाज ने कमान संभाली है पाकिस्तान टीम की, एक अटैकिंग इंटेंट नजर आया. जो जिम्बाब्वे के साथ उनकी बाइलैटरल सीरीज हुई थी वहाँ हमने देखा कि 200 से ज़्यादा स्कोर बने, लेकिन प्रैक्टिस जो मैचेस थे वर्ल्ड कप के वहाँ वो टीम स्ट्रगल करती नजर आई. क्या उस माइंडसेट से भारत किस तरह के टोटल के आसपास आज देखेगा पहले बल्लेबाजी करते हुए?
6: देखिए, अगर आप पाकिस्तान का परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट 4 मंथ्स में, दैट इज़ दिस ईयर, तो एक्सेप्ट फॉर द सीरीज अगेंस्ट

0: जाएंगे जिन्हें सत्यापन अवधि के दौरान नोटिस मिलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। श्री जाधव ने बताया कि इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग है।
1: 21 जून को जो मेन कार्यक्रम होने वाला है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में कोलकाता शहर में होने जा रहा है। वहाँ पर खुद प्रधानमंत्री भी उसमें सहभागी होंगे और लाखों की तादाद में लोग कोलकाता में आएंगे।
0: ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की रांची में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। एसोसिएशन के झारखंड इकाई के अध्यक्ष सानंद दास ने बताया कि बैठक में बैंक अधिकारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई और उन्हें दूर करने पर विचार विमर्श किया गया।
2: एसबीएस बैंकिंग के लिए हम लोग कॉन्स्टेंटली वी आर ट्राइंग एंड वर्किंग एंड फाइटिंग विद द मैनेजमेंट। अभी आज के सिचुएशन ये है कि इवन इन द हॉलीडेज संडे में भी ऑफिसर के काम के लिए उनको बुलाया जाता है। यार हम ऑर्गेनाइज करके इसी अगेंस्ट में मैनेजमेंट के अगेंस्ट में फाइट करें और एक सशक्त प्रतिरोध हम मैनेजमेंट के अगेंस्ट में कर सके ताकि वर्क कल्चर है वो हम सुधार पाए।
0: विश्व रक्तदाता दिवस पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में खास और आम सभी ने रक्तदान कर इस पुनित कार्य के लिए प्रेरित किया। कोडरमा के रितेश माधव 45 वर्ष की आयु में अब तक 87 बार रक्तदान कर लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। उन्होंने लोगों से स्वेच्छा से रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की है।
3: अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके नए ब्लड बनते हैं और वो तेजी से बनता है। शरीर की एक सीमा होती है कि इतना ही ब्लड शरीर को चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे, ब्लड दिन पर दिन शरीर में बढ़ता जाएगा, उसकी एक लिमिटेशन होती है।
0: खेल मंत्रालय और अस्मिता खेलो इंडिया की ओर से आज धनबाद में अस्मिता साइकिलिंग सिटी लीग का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विधायक राज सिन्हा ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। जिला साइकिलिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भवानी बंगोपाध्याय ने बताया कि बेटियों को खेल के प्रति प्रेरित करने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह का आयोजन किया जाना चाहिए।
4: ये पार्टिसिपेंट में जितना प्रतिभागी भाग लेंगे तो उसको उतना ही आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मंत्रालय का और अस्मिता खेलो इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य है उसी उद्देश्य को चरितार्थ करने के लिए ये धनबाद जिला साइकिल एसोसिएशन ने ये कदम उठाए हैं। इसमें अभी करीब 150 से बच्चियां पार्टिसिपेट की है। हम लोग सबको शुभकामना देता हूँ।
0: संथाल और कोल्हान प्रमंडल में मॉनसून के दस्तक देने के बाद इसकी रफ्तार में कमी आ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि ये अगले 4 से 5 दिनों के अंदर राज्य के कुछ अन्य जिलों में प्रवेश कर सकता है। इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। केंद्र के अनुसार राज्य में 20 जून तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान तेज आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रांची में प्रबुद्ध नागरिक संवाद में हुए शामिल। कहा किसान हुए खुशहाल, गरीब कल्याण को मिला आयाम, देश की सुरक्षा अभेद्य। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की रामगढ़ खदान हादसे की जांच की मांग। प्रभावित परिवारों से मिलकर हर संभव सहयोग का दिलाया भरोसा। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशियों के बीच रोचक मुकाबला। भाकपा माले इंडी गठबंधन को देगा समर्थन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया स्पष्ट।

0: मैपिंग और इन्यूमरेशन के दौरान मतदाताओं से नहीं लिया जाएगा कोई दस्तावेज। सत्यापन अवधि में चिन्हित मतदाताओं पर ही होगा लागू। और धनबाद में अस्मिता साइकिलिंग सिटी लीग का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्राओं ने लिया हिस्सा, उत्कृष्ट प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका? गुड्डी की फीस का।
1: दिखा।
2: 20,000 का लोन
1: तुरंत?
2: पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
1: लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर।
2: हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता।
1: लोहरदगा जिला में इस बार बड़े पैमाने पर आम की पैदावार हुई है। लोग आम की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आम बाजार का शुभारंभ दीदी कैफे परिसर में किया गया है। यहाँ जिले में उत्पादित विभिन्न किस्म के आमों की बिक्री की जा रही है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने बताया कि आम बाजार लगाने का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। यह पहल किसानों और महिला स्वयं सहायता समूह को सीधे बाजार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। डीसी संदीप कुमार मीणा ने कहा कि
2: नरेगा के अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जो आम के पौधे लगाए गए थे उन लोगों को बेहतर मार्केट उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से आज हम लोगों ने दीदी कैफे के सामने आम मेला का आयोजन किया है, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि जो किसान हम लोगों के गांव के हैं उन लोगों को बेहतर बाजार मिल सके बिना किसी बिचौलिए के, वो लोग यहाँ पे आकर के अपने आमों की बिक्री कर सकते हैं।
1: लोहरदगा जिला में जैव विविधता पार्क का उद्घाटन सांसद सुखदेव भगत के द्वारा किया गया। मौके पर सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि भारतीय संस्कृति में वृक्षों की पूजा की जाती है, जो प्रकृति के हमारे सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बक्सीडीपा में यह जैव विविधता पार्क लोहरदगा की पहचान बनेगा। उन्होंने कहा कि वनों की रक्षा करना हम सबों का दायित्व है, सिर्फ सरकार के भरोसे रहने से काम नहीं चलने को है। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि
3: आज ये पार्क खुला और ये पार्क जरूर ये फॉरेस्ट विभाग क्षेत्र में खुला है, लेकिन ये लोहरदगा की जनता का है। इसको स्वच्छ रखना है और जहाँ तक हो सके प्लास्टिक जो चीजें हैं उनका प्रयोग कम से कम करें।
1: अपराधों में कमी लाने एवं पुलिस एवं जनता के बीच के संबंध को और सौहार्दपूर्ण बनाने के उद्देश्य से लोहरदगा के SP सादिक अनवर रिजवी के द्वारा लोहरदगा जिला के कुड़ू थाना में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस मौके पर जनता दरबार में पहुंचे लोगों की समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट किया गया। मौके पर SP सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि
4: बहुत से मामले जो मुख्यालय में भी मेरे पास आते हैं उसमें बहुत सा छोटे मोटे विवाद के कारण भी लोग आते हैं। एक बड़ी जो बाधक है वो जमीन विवाद से संबंधित है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, उसी में एक दूसरे पर झूठी प्राथमिकी के लिए भी आवेदन देते हैं। उन सब को दूर करते हुए और भी जो इनके यहाँ के ग्रामीणों की समस्या है कानून से संबंधित, थाना से संबंधित या किसी प्राथमिकी से संबंधित, उसकी जानकारी लेने के लिए आज जनता दरबार का आयोजन किया गया है।
1: लोहरदगा जिला में मॉनसून बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। किसान खेती की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं कृषि विभाग भी विभिन्न तरह के बीजों के वितरण की तैयारी कर रहा है ताकि किसान सही समय पर खेती कार्य कर सकें। लोहरदगा में दिशा की बैठक में सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि जिले में संचालित केंद्र प्रायोजित एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के अंदर धरातल पर उतारें। सरकारी योजनाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वह समाज में अंतिम पंक्ति पर बैठे लोगों तक पहुंचे, इसे सुनिश्चित करना जिला प्रशासन का काम है और इस काम में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा।
0: अभी आप सुन रहे थे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

आंखें किसका इंतजार करती बेकरार हुई जाती हैं। क्यों बेचैनी पहले से ज्यादा बढ़ गई है? क्यों हम मदहोशी की हालत में जिए जा रहे हैं आजकल?

बदलते मौसमों के साथ अचानक बदल गया दिल की दुनिया का मौसम। जहां पहले बहारें थीं, वहां अचानक वीराने हैं। मुस्कानों को झांक लिया है उदासी के कोहरे ने। अपनी खिड़की पर खड़े हम अपनी सोच में गुम हैं और गूंज रहा है सुरैया का ये नगमा।

0: फिल्म शमा, कैफी आजमी, गुलाम मोहम्मद।
1: ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई।
0: फिल्म रुस्तम सोहराब, कमर जलालाबादी, सज्जाद हुसैन।

0: फिल्म मिर्जा गालिब गुलाम मोहम्मद फिल्म अफसर पंडित नरेंद्र शर्मा सचिन देव बर्मन
1: दिल की दुनिया जो बर्बाद करके बहुत रोएंगे उनको हम याद करके
0: फिल्म दर्द शकील बदायूनी नौशाद आज का छाया गीत इतना ही इजाजत दीजिए यूनुस खान को
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती भारत का गम एक्सपर्ट वीको टर्म

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, मगर

0: नहीं रहे हैं, वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

ढलती जाए रात। ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से। हम आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बज रहे हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। कल प्रातः 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।